आकाशवाणी कटक आज शुक्रवार उन्नीस अड़चाश शकाब्द ज्येष्ठ बैश दिन इंग्रजी 2026 मसीहा जून मास बार तारीख समय सकाळ 5:58:30 आमर प्रिय श्रोताबंधु प्रभाती अभिवादन जणि आरंभ करुछु आजर अधिवेशन कार्यक्रम आम केन्द्र प्रचारित होउछि 308.6 मीटर तथा 972 किलोहर्ट्ज चकी एक कार्यक्रम डीटीएच और न्यूज ऑन एयर आप माध्यम रे मध्य आपण सुनि पारुछंती।

0: ଦୟା ହେଉଛି ସଦ୍ଗୁଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ। ଦୟା ହେଉଛି ଧର୍ମର ମୂଳ ଓ ମାନବର କୋମଳତମ ଭାବନାର ପ୍ରତୀକ। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ସମୟ ସକାଳେ 6ଟା ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମେ ମୁକେଶ କୁମାର ବଲ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और उन्हें लागू करने के महत्व पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक

0: शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: To youth, to working life, to old age.
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसीबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सत्तेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत परिवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी कटक आरंभ करुछ भक्ति गीतर कार्यक्रम वंदना। आज वंदनार प्रथम भक्ति गीत गाई निमाई चरण हरिचंदन शिल्पी कंठरी पुरातन रचना। सुख दुख दुई सहदर भाई उभय मध्यरे दुख सिना सार सुखटी चंचल खेली जाए खेल दुख सिना एका जाणी आपणार।

0: अशोक लाहरी महोदयेन सबलं प्रोदीरितं यत् सुशिक्षिता कौशलयुक्ता च जनसंख्या एव देशस्य सफलतायाः मार्गो वर्तते। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्यारभ्य उत्तराखण्डस्य द्विदिवसीय आधिकारिक प्रवासे भविष्यति। अस्मिन् प्रवासे राष्ट्रपतिः देहरादून स्थिते भारतीय सैन्य अकादमी इत्यस्य 58-तम नियमित पाठ्यक्रमस्य निरीक्षणं विधास्यति। भारतस्य खरीफ वपनर्तौ प्रविष्टे सति तैल बीज कृषेः अनुसंधान आधारित ज्ञानं कृषकाणां चलतूरभाषे प्रदातुं ऑयल सीड्स किसान मित्र नामनी व्हाट्सएप आधारित एआई परामर्श सेवा प्रकटीभूता। अत्रावधेयं यत् कृषि कृषक कल्याण मंत्रालयेन प्रख्यापितं यत् अनया नूतन व्यवस्थया भारतस्य कोऽपि तैल बीज कृषकः केवलं व्हाट्सएप माध्यमेन निःशुल्कं विश्वसनीयं तत्क्षणं च सस्य सम्बद्धं परामर्शं स्वभाषया सारल्येन प्राप्तुं शक्नोति। फिनलैंड देशे आयोजितायां कुंतरांत वार्तायां भागं गृहणन् विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर चिंतां प्रकटयन् अब्रवीत् यत् प्रचल्यमानाः वैश्विकाः संघर्षाः स्वक्षेत्रात् बहिरपि विश्वस्य उपरि भारं वर्धयन्ति। तेन कूटनीतौ अनुकूल परिस्थितीनां निर्माणाय तथा आपूर्ति श्रृंखलायाः विश्चक निवारणाय विविधीकरणाय च बलं प्रदत्तम्। भारतस्य ऊर्जा नीतिं ब्रुवन् मन्त्रिणा प्रख्यापितं यत् भारतस्य ऊर्जा चयनं राष्ट्रहितेन प्रेरितमस्ति यत्र उपलब्धता मूल्य सुलभता च प्रमुखा वर्तते। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयल अद्यारभ्य स्विट्जरलैंड देशस्य द्विदिवसीय आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। यात्रायामस्यां मंत्री स्विट्जरलैंड देशस्य राष्ट्रपतिना गाय पार्मेलिन इत्यनेन सह मिल्यात्। श्री गोयल तत्रत्य भैषज उद्योगस्य प्रमुख प्रतिनिधिभिः साकमपि विचार विनिमयं करिष्यति। वाणिज्योद्योग मंत्रालयेन उक्तं यत् एषः प्रवासः भारत स्विट्जरलैंड आर्थिक सहयोगं सुदृढं करिष्यति सहैव भारत ईएफटीए व्यापार आर्थिक संधेः कार्यान्वयनस्य चर्चां सुगमां करिष्यति। एतदतिरिच्य मंत्री ज्यूरिख नगरे स्विस विपणिभिः निवेशकैः च सह मिलित्वा द्विपक्षीय व्यापारस्य निवेशस्य संस्थागत सहयोगस्य विस्ताराय अवसराणां गवेषणं च विधास्यति। सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन स्पर्धायाः महिला एकल वर्गे पीवी सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य प्रागुपान्त्य चक्रं प्रविष्टवत्यौ। आगामी क्रीडायां सिंधुः चेन युयु इत्यनया सह स्पर्धिशिष्ट। पश्चात् पुरुष एकल वर्गे किरण जॉर्ज सनी दयानंद तरुण मेनेपल्ली च स्वस्व क्रीडासु पराभूताः। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी कटक शुणु प्रचारित कार्यक्रम सूचना सकाळ 17:10 आमर शास्त्री शुणे आलोचना श्रवण दोष आलोचक डाक्तर अश्विनी कुमार दास प्रभात परिक्रमा प्रचार कर सकाल 7:25 कथिका शुणे सकाल 7:35 विषय रही शिशु श्रमिक प्रथार उच्छेद जातीय पदक्षेप आलोचक बेणुधर सेनापति अंजलि सकाल 7:40 शिल्पी रवींद्र कुमार महापात्र संगीत शरद कुमार नायक ओडिया आलबम गीत सकाल 8:30 वैदेश विलासर 52 भाग प्रचार कर सकाल 8:45 गीत गीतिका सकाल 9 नाटक नष्ट उर्वशी दिन 10 मूल मंच नाटक गोपाल छोटर बेतार रूपांतर डॉ विजय कुमार शतपथी प्रयोजना रवींद्र कुमार दास आधुनिक गीत दिन 11:10 शिल्पी सौमाश्री रथ एवं सुश्री संगीता महापात्र दासकाठिया गीत दिन 11:30 परिवेषण करेंगे लड्डूकिशोर शुक्ला और सत्यसुंदर नायक श्रोता एसएमएस मध्यम ओडिया और हिंदी कथचित्र गीतर कार्यक्रम मंजूर मध्यान प्रचार कर दिन 12 डाक्तर को पचारि बुझा दिन 12:30 विषय रही वृद्धावस्था देखा विभिन्न स्नायु रोग समस्या और तार प्रतिकार आलोचना करछंती डॉक्टर आशुतोष रथ नारीमहल दिन 1:20 शुणे आलोचना शिशु सुरक्षा।

0: ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता

0: हो जाएगी।
1: आज सिर्फ एक एमओयू से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
0: गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
1: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए AI का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो KYC प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
3: We signed this year a free trade agreement with Europe.
4: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
5: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है।

0: 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1,000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2,500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। बाइट, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की 2 संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
1: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
0: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगी। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगी। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मेक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और विल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और NCR के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।

0: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में पीएम ने दिया विकसित भारत का रोडमैप। हिंदुस्तान की सुर्खी है, 4 दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मूज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमरीका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है, तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है, मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहिणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रूपये होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए 3 दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोकसत्य का शीर्षक है, दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना। हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Center signs historic tripartite MOU with Assam and Nagaland governments for exploration and production of crude oil and natural gas in the two states. Government issues advisory about growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. External Affairs Minister S. Jayashankar calls for diversified supply chains and greater international cooperation amid ongoing conflicts. US President Donald Trump calls off new military strikes on Iran, citing breakthrough in talks to end war. Hosts England to take on Sri Lanka in opening match of ICC Women's T20 Cricket World Cup in Birmingham today. And in football, co-hosts Mexico beat South Africa 2-0 in inaugural match of FIFA World Cup 2026. In a significant development, the Centre has signed a historic tripartite Memorandum of Understanding MOU with governments of Assam and Nagaland for exploration and production of crude oil and natural gas in the two northeastern states. The MOU was signed in the presence of Union Home Minister Amit Shah, Petroleum Minister Hardeep Singh Puri, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and his Nagaland counterpart Nephew Ryu. Speaking on the occasion, Mr. Shah said that the signing of the MOU is a historic moment and it will enhance the prospects for oil and natural gas exploration in the country.
3: With just this one MOU, we will be able to increase our oil extraction capacity from 1,000 to

0: प्रधानमंत्री सूर्यघर मागणा बिजुली योजना विद्युत बिल ह्रास करिबा सहित परिवेशक मध्य सुरक्षित करिपारिबे। एहा सहित उभय केन्द्र और राज्य सरकार तरफ 138,000 टंका पर्यंत सब्सिडी पाइबे। आज ही पीएम सूर्यघर योजना पाई आवेदन करंतु, निज छातरे सौर पैनल लगांतु।
1: आम राज्य एवं स्वतंत्र सघन संशोधन एसआईआर कार्यक्रम आरंभ हो एथिपाई 30 मे 2026 रु 28 जून 2026 पर्यंत बूथ स्तरीय अधिकारी माने प्रत्येक घर को घर जाई प्रति निर्वाचकंकु दुईटी परिगणना फॉर्म देबे। फॉर्म गुडी को voters.eci.gov.in वेबसाइट रु मध्य डाउनलोड करि परिबे। फॉर्म दुईटी पूरण करबा परे एहाकु बीएलएम को निकटरे दाखल करंतु एवं तांकठारु प्राप्ति स्वीकार ग्रहण करंतु। अधिक सूचना पाई वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 को कॉल करंतु किंबा वोटर सर्विस पोर्टल किंबा ईसीआई नेट आप रे बुक ए कॉल विथ बीएलओ सुविधार उपयोग करंतु। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ओडिसांग द्वारा जनहित रे जारी।
2: सुनंतु एक विशेष सूचना, असंता 13 तारीख शनिवार आकाशवाणी कटक केन्द्र तरफ पूर्वाह्न 10:00 to 11:00 पर्यंत एक घंटा पाई एक विशेष फोन इन प्रश्न मंच कार्यक्रम सीधा प्रसारण विषय रही सुस्थ वयोवृद्धि योगाभ्यास। ए कार्यक्रम विशेषज्ञ भाव जोगदेवे योग प्रशिक्षिका मंजु मिश्र एवं योग प्रशिक्षक सुरेश कुमार महापात्र। कार्यक्रम को संयोजना करिबे प्रज्ञा पारमिता साहू। श्रोताबंधु माने एही विषय संपर्कित प्रश्न टेलीफोन नंबर 0671-230-3146 एवं 0671-230-3149 जरिया स्टूडियो रे उपस्थित थिबा विशेषज्ञ को सीधा सड़क प्रश्न पचारी उत्तर पाई परिबे। सूचनाटी एतिकिरे शेष हेला।
0: प्रधानमंत्री सूर्यघर मागणा बिजुली योजना, एहि योजनार लक्ष्य विद्युत बिल सहित वायुमंडलरु अंगारकाम्लकु ह्रास करिबा, सोलार स्थापन करिबा, अक्षय शक्ति क्षेत्र में विप्लव आणिबा, सबुज शक्ति उत्पादन को प्राथमिकता देउछन्ति सरकार। आज ही पीएम सूर्यघर योजना पई आवेदन करंतु, निज छातरे सौर प्यानेल लगांतु एवं 138,000 टंका पर्यंत सब्सिडी पांतु।
2: श्रोताबंधु, प्रतिवर्ष जून मास 12 तारिखरे आमे पालन करू शिशु विश्व शिशु श्रम निरोध दिवस। शिशु श्रम प्रथा को संपूर्ण रूपे निपात करिबा एवं शिशु मानंकु सेमानंकर मौलिक अधिकार एवं शिक्षा प्रदान करिबा हेउछि ए दिवसर मुख्य उद्देश्य एवं 2026 मसीहार तार विषयवस्तु रहिछि शिशु श्रम को रेड कार्ड, पिल्लामानंक पाई सुरक्षित परिवेश, वयस्कंक पाई स्वाभिमानर काम। तेबे कुहंतु त आम स्वाभिमानकु आमे बजाय रखिबा, ए शिशुमानंकु आमे सुरक्षा देबा। जेउठरे शिशु श्रमिक आमे देखिबाकु पाइबा सरकारंकर नियम रहिछि, दण्ड मध्ये रहिछि, किन्तु अनेक समयरे आखि पछरे एमिति मध्ये घृण्य अपराध हेउछि समाजरे देखिबाकु मिळुछि। आमे किन्तु चुप रहिबानी, आमे जदि ए प्रकारर कोठि बे देखिबाकु पाइले तेबे तुरंत 1098 रे कॉल करी जोगाजोग करी ए संपर्क करी आमे जणाई परिबा, आइनगत कार्यानुष्ठान मध्य नेई परिबा। आमे शिशु अधिकार शिशु सुरक्षा आयोगको मध्य जोगाजोग करी परिबा। टिके सचेतन हबा सत।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा।

0: आम राज्य एवं स्वतंत्र सघन संशोधन एसआईआर कार्यक्रम आरंभ हो एथिपाई 30 मे 2026 रु 28 जून 2026 पर्यंत बूथ स्तरीय अधिकारी माने प्रत्येक घर को घर जाए प्रति निर्वाचकंकु दुईटी परिगणना फॉर्म देबे। फॉर्म गुडी को voters.eci.gov.in वेबसाइट रु मध्य डाउनलोड करि परिबे। फॉर्म दुईटी पूरण करबा परे एहा को बीएलओंक निकटरे दाखल करंतु एवं तांकठारु प्राप्ति स्वीकार ग्रहण करंतु। अधिक सूचना पाई वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 को कॉल करंतु किंबा वोटर सर्विस पोर्टल किंबा ईसीआई नेट आप रे बुक ए कॉल विथ बीएलओ सुविधा रा उपयोग करंतु। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ओडिसांग द्वारा जनहित रे जारी।
1: एटी शिशु कर छु जीरो गीत गीतिका उपस्थापन रे थिली मु गीतांजलि पंडा कार्यक्रम सुनु छंती आकाशवाणी कटक केंद्र रो प्रचारित हेउछे 308.6 मीटर तथा 972 किलो हर्च जोगे प्रचार करुछु नाटक नष्ट उर्वशी। मूल मंच नाटक गोपाल छोटरे, बेतार नाट्य रूपांतर विजय कुमार शतपथी, परिचालना रवींद्र कुमार दास। आसन्तु सुनिबा नाटक नष्ट उर्वशी।

0: मैं अंदर आ सकता हूँ?
1: कौन है?
0: वो भीतर को आसी पारे की?
1: अरे आसंतु आसंतु, नमस्कार नमस्कार
0: नमस्कार नमस्कार। अच्छा सत कह डाक्टर राय, मो हिंदी कथा शुणिकी मुझे खांटी हिंदुस्तानी आ मो ओडिया कथा शुणिकी मुझे खांटी उत्कलीय, ए धारणा तम मन कि ना? मु पांचटा भाषा रे कथाबार्ता करि पारे, जेते बेले जो भाषा रे कथाबार्ता करू थाए सेते बेले लोक माने धरि नियति जे सेइटा मोर मातृभाषा।
1: प्रकृत रे आपनको प्रतिभा असाधारण,
0: किंतु तमे तो मोटे साधारण नुह। अरे मात्र छटा मास भितरे तमे बॉम्बे भळी शहर रे एमिति पॉपुलर हेई परलो केमिति?
1: पॉपुलर
0: नुह आउ कोन, काली संध्या रे तमे तम घर ठिकाना मते कहिथिलो, किंतु सकाळे घर नंबरटा मु पूरा भूली गलि।
1: घर पाइले केमती
0: छक उपरे आसिकरी गोटे बही दोकान को जेमती पचारी देली, से सांगे सांगे कहिदला एटा कोन तम पॉपुलैरिटी नमूना नुह कि डाक्टर? अरे विदेश रे ओडिया ना करू एटा त आमो पे गोटे गर्वर कथा।
1: नाय नाय आज्ञा, सेटा ठीक नुहे, गर्व जदि करिवार थाए तबे आपन को नै। ए हिमालयन केमिकल्स रे चाकरी कला परे मु जानिलि जे ए कंपनी रो सबटु बड अंशीदार होचंती आपन। आपण आज मो घर को आईटा मोप बड़ भाग्यर कथा। अरे देखु आपण को बसई मुझे गप जमे आरंभ कले। संजीव
2: सर,
1: ए दि कप चा आनलु?
2: हाँ सर।
0: हाँ डाक्टर, एबे तम कथा कह।
1: मो कथा कौन?
0: जेमती विवाह करिछ कि नाही, दाम्पत्य जीवन टा केमिति कटुछे इत्यादि इत्यादि।
1: विवाह हेलो, यस डॉक्टर राय स्पीकिंग। कब? अच्छा अच्छा, मैं अभी जा रहा हूँ, मुझे 10 मिनट भीतर आसुची, आपन दयाकरी टिके अपेक्षा करथांतु। गोटे सीरियस पेशेंट को अटेंड करिवा को हबो तो? माने जने प्रोफेसर का झियो।
0: ओके,
1: कॉलेज रु फेरी हटात अचेत हो गला।
0: ओहो,
1: संजीव आपन को चाय आनी दबो, आपन चाय पीबू, ए मैगजीन सब टिके देखथांतु। मुझे सांगे सांगे 10 मिनट भीतर जाऊचे आसुची।
0: ओके ओके, किए जाने 10 मिनिटा 100 मिनिट हबा कौन विचित्र। एटा का फोटो कांथरे टंगा होइथिबा फोटो रे ज्ञानेन्द्र आ उर्वशी, उर्वशी ज्ञानेन्द्र, उर्वशी तेबे कौन ज्ञान को विवाह करिछि? अच्छा ना, मते पूर्ण गोटे चाल खेल पड़ो, ना सब गोलमाल
2: सर
0: ना था।
3: आओ उर्वशी खबर कौन पंकज? तार से लेखाजोखा पीसी कौन तो तार ना? हाँ हाँ मणि, अद्भुत मणिष सेटा, से आसिला परठु मु सेठी की जाइनी। अच्छा ज्ञान केबे आसुची?
4: अरे हे आज 10 तारीख ना।
3: हाँ
4: ता चिट्ठी अनुसार से आज किंबा काली आसीबार कथा।
3: तू कल्पना करि परछु पंकज?
4: को कथा?
3: एई ज्ञान कथा, गोटे चमक खेले दे से बाहाला।
4: एई कथा कल्पना करिबी?
3: नाही, मधुसज्जा रात्रि स्त्री को छाड़ी चली जाई आउ एक चमक खेले देला ना।
4: एने पुनी फेरी आसी हुते गोटे 3 नंबर चमक देखै दबो एया ना। गोटे पागल कौन जे ताकू कहंती? अरे ता मन में जदी एमती थिला से बाहु थिला काई की?
5: अरे भास्कर पंकज, तम दिन को खोजु थिले।
3: काई की सर?
5: माने ज्ञानेन्द्र।
4: ज्ञानेन्द्र कौन है सर?
5: माने कहिबा को माने माने मु कहि पर

0: हे पंकज, तम दुहीं प्रिय बंधु ज्ञानेन्द्र ज्ञानेन्द्र नाई
1: सर।
0: हाँ, हे, हे पार्सल हाँ ये चिठी मुआ ठिया है पार्ने उर्वशी को किए खबर दब किए मिति निष्ठुर हब सतरे सतरे बड़।

0: मुत कहली अपा तू गांव को चली जा मो जंजाल तते बाधी बनी
1: होइला उरा बो जंजाल सिना मते बाधी बनी हेले हेले मो मन कोनो मानुची सात आठ दिन हलानी तोर खिया पिया नाही मुंडो बाळ गुडा को फुरु फुराई उडुची हाउ केते दिन एमिते चलिबो कहिलु भूली जा तू सब भूली जा
0: ऐसे कथा तू कही पर चोपा मो कपाल तो फटा जो डाल को धरुची से डाल भांगी पड़ुची
1: चड़क पड़िले भी सहिबा को हबो ना मा मो कथारु देखुनु तीनटा बरस घर बांधी रहली जा सांगरे से अकाल रे चली गला सेई दिन तो पड़ी मु दिया धरी रहीची कोण आउ करबी तू चली बुटी लुगाटा बदली कोण गंडे खाई दे संज हेलानी मु आलुटा दिए हो मु एथरा आसुची
0: हो तू जा अंधारे कुमुरी कुमुरी कांदिबा मो भाग्य रे लिखाई मो चारि पाखरे जेते आलुर रोसणी जळिले भी मो भितरे चमट बांधी थिबा अंधार को के नबो के के सेठी ओ आपण आपण एठी काहे की अपा चली गलानी
2: तम पई आलोर रोशनी नै मु आसी छोर बसी
0: मु कहू छी चली जाओ एठो चली जाओ तमे तमे मणिसर उपरे गोटे पिसा छ गोटे प्रेतात्मा
2: मु जाने तमे मते गाली दबो देखु छ ए पिस्तल ए नियो मो पिस्तल टा मु तम को दउ छी तमे इच्छा कले मते गुली करी पारो कि तुम कथा सुनो
0: कोन कहिबो कोन मु सुनिबि कोन बाकी अछि जे
2: विश्वास करो तम सहित मोर शेष देखा हेबार तीन वर्ष पर तमे मते प्रथमे एठी देखु छ मु किंतु सब खबर रखी तम सहित ज्ञानर विवाह ज्ञानर बम्बे जीवा सेठी तार अकाल मृत्यु प्रतिटि खबर मो पाखे अछि
0: कौन कहिबा को चाहो तमे
2: देख उर्वशी तम निकट रे मोर आ ज्ञानर स्थान कोठी ता तमे बेस जानो मु दिने तमको पाखेरे पाइथिली तम रूपरे अंध हेइथिली आ भूल भी करिथिली

0: कौन करिबो माने थाना को जीवो तापरे जेल को मदन आउ तमरो चक्रांत सब पंड हेगला
1: नै बाबू मो किछि करिनी बाबू मो किछि करिनी एई कान तराटी बाबू मदन बाबू सब कांडर मूल थारी बुद्धि रे पड़ी मु एते बाट करि गलिलो हे बाबू हे बापा मते जियोला हाजत हेले मो जीवन चली जीव रे बापा बापा मते टिके दया कर रे बापा
0: चुप पार्टी बंद करो अन्यर घर भांगी तम माने बेस आनंद पाइछ ह तम प्रति टिके भी दया मै किछ नै तमरो शास्ति दरकार थिला आउ से शास्ति तमको ईश्वर देइछंती आसो बसी आसो बाहर पटु घर ताला दे दियो आमको पुलिस स्टेशन जीवत पड़ी
1: नहीं बापा नहीं
0: आसो
1: नहीं बापा नहीं नहीं नहीं मत नियानी बापा मत नियानी

0: मेरे प्यारे देशवासियों, आपके परिवार में अनेक प्रकार के वस्त्र होंगे, अनेक प्रकार के फैब्रिक्स होंगे, अनेक कंपनियों के प्रोडक्ट होंगे। क्या उसमें एक खादी का नहीं हो सकता क्या? मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि कम से कम एक चीज, भले हैंडकरचीफ हो, भले घर में नहाने का तौलिया हो, भले हो सकता है बेडशीट हो, तकिए का कवर हो, पर्दा हो, कुछ तो भी हो, अगर परिवार में हर प्रकार के फैब्रिक का शौक है, हर प्रकार के कपड़ों का शौक है, तो एक ये भी तो होना चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप खादी का वस्त्र खरीदते हैं तो एक गरीब के घर में दिवाली का दिया जलता है।
1: कार्यक्रम शुणुंट आकाशवाणी कटक केन्द्र प्रचारित होशमिक छ मीटर तथा 972 किलोहर्ट्ज जोगे एक कार्यक्रम डीटीएच और न्यूज ऑन एयर आप माध्यम रे मध्य आपण सुनिपरछन्ते। सुनंतु एक विशेष सूचना, आसंता 13 तारीख शनिवार आकाशवाणी कटक केन्द्र तरफ पूर्वाह्न 10:00 11:00 पर्यंत एक घंटा पई एक विशेष फोन इन प्रश्नमंच कार्यक्रम सीधा प्रसारण विषय रही सुस्थ वयोवृद्धि योगाभ्यास। एक कार्यक्रम विशेषज्ञ भाव जोगदेवे योग प्रशिक्षक मंजु मिश्र और योग प्रशिक्षक सुरेश कुमार महापात्र। कार्यक्रम को संयोजना करेंगे प्रज्ञा परमिता साहू। श्रोताबंधु विषय संपर्कित प्रश्न टेलीफोन नंबर 06712303146 06712303149 जरिया स्टूडियो उपस्थित थिबा विशेषज्ञ को सीधासलख प्रश्न पचारि उत्तर पाइपर। फोन नंबर दुईट कहि रखु 06712303146 एवं अन्यटि 06712303149। सूचनाटि एतिकरे शेष हेला। एथरो असंतु सुनिबा निर्दिष्ट व्यक्तिंक संपर्करे सूचना। जिला सूचना और लोकसंपर्क विभाग जनाई दीपांजलि बलियार, जेजेमा बासंती बोस, जेजे विजय बोस, ठिकना खटवेन साई थाना लालबाग जिला कटक, बयस 24 वर्ष, उच्चता 5 फुट 3 इंच, गौर बर्ण। से चलित 2026 मसीहा जून मास 3 तारीखर किंवाड़े निखोज हो जाए गला बेले से बैगणी रंगर पोशाक परिधान करथिले। कल्पना दास पिता अशोक दास ग्राम दप्तरी थाना चौद्वार जिला कटक, बयस 14 वर्ष। से चलित मास 2026 मसीहा जून 3 तारीखर सकाळ 8:30 मिनिट्रु के तंकु अपहरण करि नै जाइछि। जदि कोनोसी श्रोहदय व्यक्ति एमानक संपर्क रे कोनोसी सूचना पांती तेबे जिला सूचना ओ लोक संपर्क विभाग किंबा स्थानीय थाना रे जणाइबाकु अनुरोध। सुनिली निरुदिष्ट व्यक्तिंक संपर्क रे सूचना। शुणु आज प्रचारित कार्यक्रम सूचना दासकाठिया गीत प्रचार कर दिन 11:30 परिवेशण करेंगे लड़ू किशोर शुक्ला और सत्य सुंदर नायक। श्रोता एसएमएस मध्यम ओडिया और हिंदी कथचित्र गीत मंजुला मध्य कार्यक्रम प्रचार कर दिन 12:00 डाक्तर को बजार बुझा शुणे दिन 12:30।

0: हाँ
1: ये नियत निर्देशक ये बार अन्यथा करीबो
0: अच्छा
1: ना नहीं
0: ठीक ही
1: कोमल पुत्र परे सोई छंती सीता किंतु अवस्था तंकर थिला कौन
0: कौन
1: आसन।

0: जाता ही विषयता न बाला ना मृत्युरागत राम किसी पापरु
1: अच्छा।
0: आज बालक मृत्यु घटी
1: ठीक ठीक
0: ताले देवदत्त ब्राह्मण कथा कौन सीतांग त्याग कर राम
1: ताले प्रकृत घटना कौन
0: प्रकृत घटना कौन यही मोर गुरु
1: अच्छा।
0: उत्कल केशरी गायक उदयनाथ रथ शर्मा लिखिले गोटे पद
1: कौन
0: कहले
1: कौन।

0: तार
1: तारा कहला हे राम
0: अच्छा
1: मो ठारु मो स्वामी के तुम्हें छोड़ नेल तम जीवन भितर संपूर्ण तम स्त्री की भोग करी परिबो नाही
0: ठीक
1: तमरो विच्छेद घटिबो
0: आहा
1: ओ ए अभिशाप योद्धार गुरु थिला
0: अच्छा अच्छा
1: जगत रे जते विच्छेद अछि
0: ठीक
1: जते पाप अछि जते अनुताप अछि जते दुख अछि किंतु स्त्री ठारु पुरुष पुरुष ठारु स्त्री ए विच्छेद बड़ विपत्ति
0: हे स्वामी स्त्री विच्छेद बड़ बाधा
1: यही थे पाई भंज लिखिले
0: अच्छा।
1: सुभद्रा पणे
0: हाँ।
1: सर्जीवारे।

0: प्रापति
1: जगत रेत विपत्ति अच्छी भंज कहले नारी ठार पुरुष पुरुष ठार जो नारी विच्छेद या ठो बल की विच्छेद ना कोमल पत्र ते
0: शोइछंती
1: ये निद्रा भांगी जाइछि देखिदेले पत्र पढ़ीछंती पथ पचारी पिता घर को जीवी आउ अयोध्या को मनन करी लक्ष्मण लेखी
0: जाइछंती
1: राम को सेठे कोन गाली दिछंती सीता है अर्जावर्तिनी सीता
0: ठीक
1: सत्य युग रे पुण्य श्लोक कहले नलराजा
0: अच्छा
1: त्रेता युग रे पुण्य श्लोक चबई देही
0: ठीक
1: पुओ पुण्य श्लोक रामचंद्र ही पारलेनी काहे कि अर्जावर्तिनी जेते अछंती भारत वर्ष रे ए अर्जावर्त रे कौनसी स्वामी सीता को जी निर्जातित लाछित निष्पेषित कर राम कौन पुरुष स्त्री की करी कि
0: तथापि मा सीता व्यस्त हो ना
1: तेणु मधुसूदन राय गोटे पद लिखिले
0: अच्छा
1: सीता एठ राम को कहते कौन कहले
0: कौन।

0: से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक भी उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को संपन्न होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1650 रूपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पूर्व टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सरकार ने संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों पर भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने ईरान और अमरीका के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर दोनों देशों से जल्द ही एक निर्णायक सहमति बनाने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मिस्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ नियोजित सैन्य हमलों को रद्द करने की घोषणा की स्वागत करता है। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन हो गया है। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। भारत की पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने चीन की ताइपेई की चेन सू यू को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today

0: 64 ବର୍ଷର ଦୃଢ ମୂଳଦୁଆ ଚେତିନର ସିମେଣ୍ଟ ଦ ପରଫେକ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ ଚଏସ୍।
1: कस्टमर केयर तरफ फोन आसीथिला कहुथिले तमरो 50,000 रिवार्ड पॉइंट्स एक्सपायर हेइ जिवो। ए लिंक परथि एपीके डाउनलोड करिनियंतु।
2: ठीक लागुनी, स्कैम भी हेइ पारे।

0: करंतु नहीं साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 मने रखंतु SBI सचेतन रहंतु सुरक्षित रहंतु
1: अच्छा दास बाबू आपण को घरटा 1970 रे तयार हितला राइट हले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि
2: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सही थे पई मु सेते बेले मोर विश्वास रखितली एवं आजि मध्य चेटिनाड सीमेंट उपरे
3: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नहे बरम पीढ़ी पाई रही थाए चेटिनाड सीमेंट सुपर ग्रेड सीमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूल दुआ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस
4: प्रजर्गुरुचु मृदंगवाद्य परिवेषण करिसंती प्राणनाथ जेना।

0: सुना सुना सुना गाँ हेउ अबा सहर ओडिशा वासिंक पाई खुशी रो खबर
1: कौन कहुनु
0: छातरे सोलार पैनल लागिब 1,38,000 पर्यंत सब्सिडी भी मिलिब
1: आउ इलेक्ट्रिक बिल
0: विद्युत बिल संचयर नुआ संभावना आनिछि पीएम सूर्य घर मागणा बिजुली योजना
2: आम राज्य एवं स्वतंत्र सघन संशोधन एसआईआर कार्यक्रम आरंभ हो एथिपाई 30 मे 2026 रु 28 जून 2026 पर्यंत बूथ स्तरीय अधिकारी माने प्रत्येक घर को घर जाई प्रति निर्वाचकों को दुईट परिगणना फर्म देबे फर्म गुडी को voters.eci.gov.in वेबसाइट रु मध्य डाउनलोड करिपारिबे फर्म दुईट पूरण करिबा परे एहाको बीएलएम को निकटरे दाखल करंतु एवं तांगठारु प्राप्ति स्वीकार ग्रहण करंतु अधिक सूचना पाई वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 को कॉल करंतु किंबा वोटर सर्विस पोर्टल किंबा ईसीआई नेट आप रे बुक ए कॉल विथ बीएलओ सुविधार उपयोग करंतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी ओडिसांग द्वारा जनहित रे जारी
3: प्रचार करुछु नारी महला।

0: नारी महलस सहला आकाशवाणी कटक वर्तमान समय दिन गोटे बजी पचास मिनिट हवाक जाउची। प्रथम शुणंतु ओडियारे संवाद एवं परे परे प्रथमे इंग्राजी एवं परे हिंदी रे संवाद रिले करी प्रचार करिबु आकाशवाणी दिल्ली रु किछि क्षण मध्यरे।
1: आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती आशुतोष पति। देश विकाश क्षेत्र में महिला अभूतपूर्व योगदान को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रशंसा। टेलीविजन और रेडियो प्रसारण क्षेत्र में व्यवसायर सहजता वृद्धि उद्देश्य जारी है टेली जोगाजोग आईन 2026 चिठा नियम। नीट यूजी 2026 पुनः परीक्षा निमन्ते परीक्षा अवधि 15 मिनिट वृद्धि। श्री अमरनाथ यात्रा प्रस्तुति संपर्कित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में अध्यक्षता कले स्वराष्ट्रमंत्री।

0: रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है, अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
2: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं। दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल

और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से दो दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रूपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित एससीओ सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया एससीओ का केंद्र, शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रूपये के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रूपये और प्रतिमाह 24 लाख रूपये तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह वीडियो पूरी तरह फर्जी है।
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने

0: 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 प्रश्न से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए ये सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
2: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। एक महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्ना बॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकानी यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14, 21-14 से शिकस्त दी।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आपणमाने कार्यक्रम शुणुछन्ति आकाशवाणी कटक केन्द्ररु। कार्यक्रम आम केन्द्ररु प्रचारित होउछि 308.6 मीटर तथा 972 किलोहर्ट्ज जोगे। आमर परवर्ती कार्यक्रम आंचलिक संवाद शुणिपारिबे एही विज्ञापन परे।
4: बन्या हेउ बा महाबात्या सबु परिस्थिति रे
5: गारु सहर जाए सबु स्थान रे
4: आबाल वृद्ध बोलिता समस्त।

0: तपाई
1: जुआंग ओ सांतालंक ठारु बंडा एवं कोयांग को जाए सबुरी भाषा रे
0: केवल आकाशवाणी।

0: ଖାଦ୍ୟ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବିନା ଭୋଗିଲା ଥିବା କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମର ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କେତେ ଦୂର ସହାୟକ ହେବ, ତୁମେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ।
1: मैं अहिंसा का पुजारी हूँ। मेरे पास तो एक बड़ा धर्म पड़ा है कि भव आदमी को गुणग्राही बनना चाहिए। वो मेरा धर्म नहीं है, तुलसीदास ने हमको सिखाया। उसने कहा है कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की नपि विकार। तो ईश्वर ने जड़ और चेतन सब, तब से हमारे क्या करना। तो कहते हैं कि जो सच्चा आदमी है उसके लिए तो यही है कि जैसे हम को पानी को छोड़ देता है और उसमें जो चीज भरी है दूध में मलाई देती है उसको दे देता है, इसी तरह से हमारे जो मलाई है मनुष्य के गुण है उसको मलाई की उपमा दी है वो दे देना, बाकी अवगुण है वो छोड़ देना।

0: बोल तो रहा
1: बोलो
0: तोर नो आकार ऐसा ना एटिके
1: कौन कह
0: फुलमनी कड़े घर जगिया हलानी
1: हां
0: छी छी छी छी छी छी कहि बाबू तते के लाज लागुनी अरे केड़ा घर रो छुओ बड़ो होबा परे बाहन होई से एकुटिया कुटी पदा को बाहर है तू बाप हे ताकु पुनी स्कूल को पठाउछु माइनर पास कोलानी बहुत होई गला पढ़ा बंद करी ताकु हाथ को दी हाथ कर दे
1: छले
0: किछि कथा सुना जीवनी जा है छी बहुत है छी ताकु जदी आज थारु स्कूल को पठाउ तबे पदों केशरीपुर रे तोर उठाबो नाही बुझलु
1: मलेदा
0: अरे सोना तो झुओ कोन पाठ पढ़ी हाकिम हबो हां बहुत पाठ होई गला एबे घर करोना सिखु चिता कोटे सिखु ता हेले सिना जाई आमो केला घर सुंदर हबो
1: मलेदा तमे तो आमो जातिर मुखिया तमे जहा कहिबो सेटा कोन अन्याय कहिबो तमरी कथा मानि लेली आजि थारु फुलर पाठ पढा बन्द
0: अरे तू सिना मानुचु हेले रतन दास रो पुओ केशवा से कोन मो कथा मानुची एकादश क्लास रे पढिलानी से बमकस बाबू को संगे कोन फुसुर फुसुर होउची
2: सबु जेमिते ओलटई पकेबे आ कुळांगार
0: अरे आमो जाति रो तो पाठ नाही तमे काई सेगुडा पढिबा को जीवो ता बाप रतना मो कथा मानलाने सेमति अपंतर रे पडिमला आमे तो मुळुर ताकु चेते देथिलु देखिलु तो फळ सांगे सांगे पाइगला
1: केशव को मोर जोई करिबे मनैता
0: चाहिता ओपुर को चाहिता पुओ अमृत बरसिब पीकिरी अमर हबु
1: काहे कि मनैता
0: अरे मूर्ख एति कि बुझी पालु नै केशव अधिका पाठ पढिबो विदेश रे जाइकिरी रहिबो बड़ घर देखि बाहा भी हबो हां आजि काली आ जाति गोत्र खोजुचि के शेषु को पुओ तू सपन को कुंडे बसि थबो आ कोन
1: मु कोन करिबे मनैता मते बुद्धि बते दियो
0: एत बड़ को पुओ ठीक बाट को आइला आ सुन सुन फुलमनी की कह से जाए केशव को कहू से पाठ पढ़ा छाड़ू अरे केड़ा घरे पाठ कौन हबो खाली साप धरी जानले कि साप खेली जानले एया हैला कहलु देखी भंडी किरी ए संसार किए न खाऊ किए कलम रे भंडुची किए जिनिस रे भंडुची किए बा बुद्धि ज्ञान रे भंडुची आमे एबे कथा रे भंडी किरी बंचुचु
1: केशव जदी फुलमनी कथा को न माने
0: कौन कहलु न माने मानिबनी मानिबनी कोड़ जीव अरे हे ये परा मनई दास रो गद कोला मानिबो नै हां आज से स्कूल रु फेरिला परे फुलमनी केशव पाक पठेबु बुझिलु हम नाथ पंचु गरीब सामा ए सब जाउचंती सिमिली पहाड़ साप धरिया पई तांकरी सांगरे केशवा को साप धरिया पई पठे दबा अरे हे ये कथा हो सूर्य अछि मुंडो ऊपर हेलेनी मु जाउची तणे मोर बहुत काम अछि हां
3: लंगल जार जमी तार भूमिहीन को भूमि दियो लंगल जार जमी तार भूमिहीन को भूमि दियो गृहहीन को गृह दियो लंगल जार जमी तार लंगल जार जमी तार लंगल
4: के हो फुलमनी मु भाविल आउ के
5: खंडरी गला
4: ए सेमती कथा कहबु न कह दउ छी हां
5: ओ हेला बाबा तमे खूब साहसी अच्छा कहले आगे आज एते राती जे कोठी थिलो संजपुर मु तुमको एठी अनै बसी कोड जाइथिलो
4: जानू जमी आ घर पई जाई थी देखिबू तो पई गाँव रे जमी खंजी देवी भल कोठा घर तो देवी तू तू से घरे बसी खाली हुकुम दबू
5: हां जमी कोठा बाड़ी
4: हां
5: तमे तो कोन कहछो के सब भाई पागल हे गेलो ना कोन
4: हां फुलमनी मु पागल हे जाई छी किंतु मो संग रे मु तत्ते भी पागली कर देबी बुझलु हे
5: सत्तर के सब भाई पाठ पढ़ी पढ़ी तमरो मुंडो खराब हे गेलन सेई कथा कहि बोली आज ऊपर तमको जगी बसछी ए केशव भाई गोटे कथा कह भी मानव
4: कौन कह
5: जहा कह रखो
4: कथा कौन न खाली इड़ सड़ कथा कह कौन कह
5: तम पाठ पढ़ा से था आम केला जाति लोक आम कौन हम ये पाठ पढ़े
4: तू तू ये कौन कह फुलमनी मु बेमकेश बाबू को पाठ पढ़ी बड़ मनीष हेबी स्लोगान देवी लंगल जार जमी तार भूमिहीन को भूमि दियो गृहहीन को गृह दियो
5: केश भाई मो राण मो मुंड खाटी आमर पाठ लोड़ा ना बड़ मनीष हवा दरकार ना तमें साप धर साप खेल शिख तापर मत बाहा हु
4: फुलमनी
5: तम गोड़ धरी नेहरा केश भाई
4: अरे अरे ये कौन कर गोड़ छाड़ गोड़ छाड़ अरे गोड़ छाड़ दे ओहो
5: नहीं नहीं तमें आगे कह केश भाई तमें पाठ पढ़ी जीवन ये गाँव में पोषा साप मान को धरी शिखब तापर चंदका जंगल रु छोट बड़ साप धरव शेष बड़ बड़ जातीय साप धरवाक जंगल को जीव

0: ये श्रावणे बरसा झुमु झुमु नाचे भोदुए भोदे खराय सिणे कसण जमि चर सिने कार्तिके बा उतरा कि गोविंद हरे भाला भाला ये लखे भारत धरी दे कनाई चलिब आजि मथुरा कि गोविंद हरे ये भाला भाला भाला गद अछि बच्चा जर मौरा अछि आ मारी पारिबु नि बच्चा मारी पारिबु
1: मुझे फुलमणि आउ डेरी कर किसी लाभ नहीं तेने नाथ दादी पंचवाई सामरिका समस्त मत अपेक्षा कर रही थी
2: तुम्हें जाओ केशव सिमिलिकाल जंगल रु साप धरी भल फिर ना शिखर चंटी तुम भरोसा
1: फुलमणि देख देख सेमती हेले मु जम्मा साप धरिबो को जीवि हाँ
2: मु ठीक अच्छे केशव भाई आज कहीं तुमको पाखु छाड़े
1: चाहू देख तो कथा को मानी पाठ पढ़ा छाड़ी ब्रह्मकेश बाबू को सांग छाड़ी साप थे शिखिली आज अनुकूल बाहर बेलू कहू कौन ना छाड़ को मोटे चाहूनी
2: तमें खाली पर को दोष दे जान केशव मो मन कथा के बुझीच कहीं सब बेले तुम मंगल कामना कै के जानवाक चेष्टा
1: करो फुंडी गेल कौन टे कहीदेली बोली सांगे सांगे धरी बस ना ठीक अच्छे आज मोर जीवा बंद
2: नहीं तुमको जीवा हम केश भाई ना से कह फुलमणि कथार पड़ तुम साप धरवा गलनी आम गाँ मुखिया मन मऊसा कथ तो तुम जान कथ बार कथ मिस
1: कहला से तु देख तो आखिर लो देखे मुझे तरली जाऊ तोर मन भल ना तत्ते छाड़ जावाई मोर मोटे मन बल नहीं
2: केश भाई तुम्हें पुरुष पु तुम्हें एमती हेल्ले कल ए देख मुझे खुशी अच्छी माँ शिखर चंडी को डाकुची तुम कि असुविधा हेनी
1: बेले बेले तो कथा को ठीक बुझी पारनी फुलमणि केत कौ जा केत कौ जा देख लु पंचु भाई डाकिले मुझे
2: केशव भाई तुम नुआ ही जंगल को जाऊ नाथ दादी कथ मानि चलो हाँ से पुराणा लोक कथा मानव नियो ए गामुछा चूड़ा बंधा
1: हेलो कल तू तो सही कथा को सुहांगुली खुशी हो कि नुआ कथा कह
2: फेरिले के नुआ कथा कह केशव
1: कौन तमें बर मु कनिया तमें परा राजा पु मु तम सुना पानिया अरे देखो देखो मुटा को हांडी पूरी करदे मो कथा भी शुणी रख मु कहीदे तू न आसिले मु ए घर छाड़ी कुआड़ को जाऊनी हाँ
3: हे केशव काई एते देरी करछु खरा कान हेले आमे कोन आउ एते बाट चली परिबा छोटा।

0: काई बेमो के सब एपर दन देखा नांती
1: मीटिंग ही करिवे अरे काई मीटिंग करिवे
2: हां हम ऊपर मागणा रे घर मिलिबो
1: घर मिलिबो ना हेंगु मिलिबो सब खाली धुआ बाण हाथी ने घोड़ा ने मो बेंकाली बजे दे किछ तो काम नहीं
2: नाही मनी मूसा अनेक जार पर घर दिया गलानी जमी दिया गलानी आमे काई न पाइबा
1: अरे छड़ छड़ अरे आमे तो हेलो केला जाजा बरो घर द्वार गोटा हमर कोन होबो हां आमर जीविका हला सापो खेला चीता कुटा चढ़े मोरा मूसा खेल गाँ मुंड बर मूले पोखरी हुड़ारे आम रणी घर आम करू कौन
2: सबुदिन आम कौन सेमती रही थी मुनि मूसा
1: ना सेमती कहीं रही जाति गोत्र छाड़ बामण करण सांग रही
0: बेमक साहब आसिले कौन कौन शुण अरे
3: बंधुगण
4: आपण माने जाजावर होई आउ केते दिन रहिबे मु सरकार ठारे अनुरोध करूची एही पद्म पोखरी हुडारे गोटे कॉलोनी रे आपण माने रहिबे मागणारे जमी एवं गृहपालित जीवजंतु जगाई दिया जिवो आपण माने मनीष परि मनीष होई रहिबे बंधुगण आमे ठीक करिछु जहा लोकंकर हित करिवो सेपरि कामरे आमे सरकारंकु साहाज्य करिवो एवं लोकंक मंगल पई नुआ नुआ काम हातकु नेबो सेतिपाई मंत्री महोदय आसी एठारे नवनिर्मित गृह एवं जमी पट्टा देवा दिन एक समवाय समिति गठन करा जिवो लोकंकु ऋण जोगाई दिया जिवो सेही समय रे समिति रा सदस्य एवं परिचालक हेबे आपण माने गुआ भाई माने लंग राजा गृहहीनकु भूमिहीनकु भूमिहीनकु

0: तमें कुआडे गल केश भाई बर्षे पूरी गला तमें कौन फेर ना पद्म केशरीपुर पद्म पोखरी कूल में बस तुम साप खेला कौन मुझे देखिपर तमें कौटि अच केश भाई तुम फुलवनी को तुम कौन भूली गल काली परी लगुच
1: एथर मोर दोष क्षमा कर महाराणी
0: केते तोर कहिछि से खेमा फेमा मते कहिबनी बोली अच्छा तमे परा मोठो बड़ कहले कोन ना महाराणी
1: जानु तू रागिले ना खूब सुंदर दिसु फुलवनी सेति में के जाने कहि कि तते रगे हो मते भारी फल लागे
0: फल लागिबनी कहि कि मु तमर के की
1: ए तू तू मोर अति आपणार लोक फुलवनी तते ने मु केते सपना देखिछि आमर बाहाघर हब आम विदेश जावा साप खेल पैसा कमेवा
0: मुझे कौन सपन देखी ना कि सब गोटे सुंदर घर ता भितर तमें आपर आमर छोट पुटे तमें साप खेल मु पसरा धरी के मनोहरी दरब चेर मूल गद डेउरिया बिकवि चिता कुटेबी पक्का पिंडा देख डाक चिता कुटेबा चिता चिता कुटेबा गो चिता माधोई लता गो कुंज लता अशोक बनर लवंग लता जगमोहन गो गोलाप फूल मल्ली मालती चंपा फूल सुकी दोणी कृष्ण राधा ना लेखी देवी नदेई बाधा हातरे लेखिबी माळेई हार गोडरे लेखिबी मुकुता झर मुंडरे लेखिबी टिपा आसगो एणिकी अपा ए डाक शुणी गाँ झी बो मैंने किए कौटे धाई आसे किए कह मो बाहरी चिता कुटे दि किए कह मो गोड़े किए कह मो मुंडे गोड़ पारि बस सड़े कलार चिता लेखु लेखु मु कहबी
1: बहुत ए देख लु पश्चिम आकाश को चाहल से पहाड़ तले सूरज डूबी गले चल चल घर को चल
0: ना आउ टे बस
1: आलो तो पाखे एमती जुग जुग

जाति वर्ण संप्रदायहीन धनी बड़ लोक पुंजीपतिहीन समाज आमर मंत्र हेब लंगल जार जमी तार आमे हेबा संस्कारमुखी समाज मनीष भांगिन पड़ी आगे आके सब आगे।

0: अच्छा सावरकर, तमे केबे आत्महत्या करूछ?
1: आपणंको परे
0: मु जानी छी ए जेल ले सब धर्मघट आ विश्रंखला तमरी प्ररोचना रे होची। लोक काम करबे को मना करछन्ते। बांगला रो नानी गोपाल गाधेबा खाइबा पीबा सब त्याग कर दे छी। अरे बुझा तको बुझा, अब से मरि जीवो।
2: की मरिबा चिंता आपणंको मुंडो को केबे टुपसिलाडी? हां 16-17 वर्षर से युवक को केते निर्यातना दिया जाइछि दादा आप जानिथिबे। 17 वर्षर जने पिला खोणा टाणी पारिबो तो ताठु कमल छोड़ी निहा गला, ता लुगापटा चिरी दिया गला, इत्ते शीतरे से बुहिरे कोला धरे पड़ी रहछि।
3: हे चल चल साहब, ए परमानंद काम करिया को मना करूची।
0: अरे कुकुर, तो काम काई करनो?
4: ए साहेब गाली दियो, मु कुकुर नुहे मनीष।
0: मनीष नुहे तू कुकुर छुआ।
3: हक ए ए तू बारी साहेब चापुड़ा मारलु?
4: बारी राजबंदी मानक सहित भद्रामी रे कथा हुओ, मु झांसी रो परमानंद, मने रखिथिबो ए कथा।
0: ले जाओ तको, सिकोई बंदी उल्टा झुलई दियो।
3: हां चल चल।

0: सावरकर जी आपण को एठु भारत पठा जीवा पे आदेश आसी जाई छी अभिनंदन हो आपण को येरवाड़ा जेल रे आ आपण को भाई को रत्नागिरी जेल रे रखा जीवो आदेश रे एही शर्त रखा जाई छी जे आपण कोनसी राजनीतिक कार्यकलाप पर भाग नेबे नाही।
1: सावरकर जी ए कथा सुनी खुशी लागु छी जे आपण ए नरकरु मुक्ति पाई गले किंतु आपण को कथा बहुत मने पड़िबो
2: से कथा भी मने रखिबो जहां मु कोई थिली
3: एको एको देवता
2: एको देश
3: एको भाषा
2: एको जाति
3: एको जीव
2: एको भाषा।
4: रत्नगिरी आसीबा दिनठु सकाळु संध्या जाए साक्षात्कारी मानक भिड़ लागि रहुछि एई नियो पानी मुंदे पी दियो
2: नियो इन्हों जमुना एक ग्लास नहीं जाओ
4: ए सुनु छ गांधी जी आसी चंती
2: है गांधी जी बापू आसंतु आसंतु बापू आसंतु प्रणाम आसन ग्रहण करंतु यमु स्त्री जमुना भाई
4: प्रणाम
5: सुखी रुह
2: आपण काही कष्ट कले
5: एथिरे कष्ट कोण बरंग आपण जो कष्ट भुगी छंती ता आगरे मो कष्ट किछि न एठी के आसी थिली भाबिली हम वीर सावरकर को भेटबी
2: कारागर मुक्ति पई आपण जो चिट्ठी लिखिथिले सेति पई धन्यवाद मो भाबिथिली छे आपण मते भूली सारिथिबे
5: ना ना ना सबु मने अछि विजय दशमी दिन लंडन रे साक्षात होइथिला आपण को अंतर्निहित शक्ति स्वदेश प्रीति विभिन्न विषय रे आपण को दृष्टिभंगी आ आपण को स्पष्टवादिता रे मु बहुत प्रभावित होइथिले मु गुटे लेखा भी प्रकाशित करथिली
2: हां मु यंग इंडिया रे बाहर थिबा आपण को से लेखाटी मु पढ़ीथिली
5: आजकल कोन चली छि
2: हिंदू समाज रे परिव्याप्त असमानता अस्पृश्यता भाव को देखि बहुत दुख लागुछे दरिद्रता ओ अमानवीय व्यवहार जोगु समाज रे गुटे श्रेणी अन्य धर्म ग्रहण करुछे सेमानकु शुद्ध करी पुणी निज सह जोडीबा को हेबो धर्मीय मत पोषण करथुवा लोके एथिरे प्रतिबंधक सृष्टि करुचंती एई जिद्दारी आउ पुरुणा चिंताधारा वहन करथुवा लोके निज भाई मानंकु मंदिर प्रवेश करिया पई बाधा दउचंती हमरी किछ लोकंकु जोगु आमे संगठित हेइ पारुनु देशरे एकता प्रतिष्ठा हेइ पारुनि
5: केवल हिंदू समाज काहे कि
2: ने ने कारण अन्य मानंकु उपरे हमर किछ कहिबार अधिकार नाही कोनोसी हिंदू केभेले सेमानंकर नेता हेइ पारिबे नै आज भी अनेक लोक कोनोसी सुल्तान को अपेक्षा करिछंती
5: ए देशरे अनेक धर्म रही छे
2: रहिथाउ हां भारत गुटे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र किंतु भारतर परिचय हिंदू मानकु नै एठी समस्ते निज धर्म पालन पई स्वाधीन केवल एथिकि जे अन्य मानंकर धर्म को भी सम्मान दियंतु तार विलोप पई चेष्टा न करंतु ए देश उपरे बारंबार आक्रमण होई छे ई देश विदेशी शासन अधीन हिची संस्कृति को छारखार करा जाई छी आस्था को आहत करा जाई छी किंतु एक कथा केहि उठो नांती समस्त अन्य मानंकर देवदूत साजीबा प्रतियोगिता रे माती छंती मु आहत एवं असंगठित हिंदू मानंकर संगठित करबा को चाहे बापू
5: ठीक कथा
2: आउ आपण कोण करचोंती
5: लोकमानंकु चरखा चळैबा पय प्रेरित करूचे
2: हस्ततंत द्वारा स्वदेश को प्रोत्साहन मिलिबो कुटीर शिल्प जगु लोके आत्मनिर्भरशील हेबे आत्मनिर्भर हेबा संग को आमको आत्मसुरक्षा उपरे मध्य गुरुत्व देबा को पडिबो युवक माने सैन्य बाहिनी रे जगतबा उचित
5: ना ना मु हिंसा रे विश्वास करेनी
2: आत्मरक्षा प्रत्येक व्यक्तिर धर्म

0: वंदे मातरम
1: वंदे मातरम
0: वंदे मातरम
1: वंदे मातरम
2: आज आपण को प्रसन्नता देखि हमें समस्ते खुशी
3: हां ये तो खुशी रो कथा अनेक वर्ष परे आम देश स्वाधीनता पर्व पालन करूची आज से समस्त पवित्र आत्मा को स्मरण करी समान को प्रति कृतज्ञता प्रकाश करिवार दिन सेति पई मु आज तिरंगा सहित गेरुआ रंगर पताका मध्य उड़ाऊ हाँ आज ए उत्सव आनंद द्विगुणित होता जदि सिंधु ठारू भारत महासागर जाए आमर अखंड भारत प्रतिष्ठा होता किंतु दुखर कथा ताहेलानी
4: किसी लोक से कमर पूरा दाम आदाय करिबा जानते
3: आदाय करिनेले परा देश को भाग भाग कर
2: सावरकर जी आपण कांग्रेस रे जोगदेबा उचित होता सेठारे आपण बिना संकोच रे निज चिंताधारा को उपस्थापित करि परि थांते
3: मनोहर जी साहेब मो भली स्पष्टवादी व्यक्ति को लोके ग्रहण करि पारंतिनि आज जने व्यक्ति एठारे उपस्थित रहिबा कथा
2: आपण कहा कथा कहउछन्ति
3: सुभाष बाबू को कथा कहउछि ताको खोजी बाहर करिबा दरकार 1940 जून 22 तारीख दिन जापान जीवा आगरु से एठी मते देखा करियो कासथिले कि अपूर्व व्यक्तित्व थिला तांकर सैन्य संगठन युवक मानकर सैन्य बाहिनी रे योगदान ए सब विषय से मो मत सह एकमत थिले सुभाष बाबू मध्य मने करूथिले जे सशस्त्र विप्लव बिना स्वाधीनता संभव नुहे गोटे कथा मु बिना द्विधारे कहि पारि जे इंग्रेज माने सुभाष बाबू भय रे भी भारत छाड़िले इंग्रेज माने तांकर ना सुनी भय रे थरुथिले जय हिंद सुभाष बाबू जय हिंद
2: चर्चा होता जे सरदार पटेल प्रधानमंत्री हेबाक जाउछंती आ हठात जना पड़ा जे पंडित नेहरू प्रधानमंत्री हे गले एठी दुई जन प्रधानमंत्री को पई दुईटी देश करा जाइछि देश पई प्रधानमंत्री करा जाय नांती दुई जन प्रार्थी को संतुष्ट करबा पई देशर विभाजन कर दिया गला आउ देशर लोकंकु मृत्यु मुख को ठेली दिया गला
3: विभाजन पई केवल गांधीजी को दायी करा जाय पारिबनी से निजे कहिसेंती

0: हेलो फोन इन मल्हार।
1: हेलो फोन इन मल्हार। खुशियाँ मिले हरदम आपको, गम आपके साथ ना हो। खुशियाँ मिले हरदम आपको, गम आपके साथ ना हो, ये दुआ है हमारी, आप कभी उदास ना हो।
0: वाह केते चमत्कार शायरी रो आपण आरंभ करले आजिरो फोन इन मल्हार रो कार्यक्रम को आम सहित। तेबे भौणी आपण आम श्रोता मानको आपणको परिचय जणि दियंतो, केमिति अछन्ते आम श्रोता मानको मध्ये जणि।
1: ठीक अछि, तो समस्तंको हेलो कटक, हेलो आकाशवाणी, दिस इज मामा मिश्र, आई एम फ्रॉम भुवनेश्वर।
0: ते भौणी आम कार्यक्रम सब सुनोछन्ती ना नाही?
1: हां हां, मु सबबेले सुनोछि। आ लेटा एई सातटा पाखुडा आम मानको स्पेशली मते पूरा एंटरटेनमेंट करछि फुल दम रे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद भौणी, आपण सुंदर भाबरे अति संक्षिप्त भाबरे मतामत टे देले। तेबे आजर मल्हार फोन इन रे कोन रहबो आपनकर अनुरोध रे गीत?
1: मैम मो फैमिली को, चिन्नू को एंड विश्वजीता मैम को, शीतल मैम को, प्रीति मैम को, तेजस्विनी मैम को, प्रतीक्षा मैम को स्पेशली विश कर देबे एंड कुओ मोर कला ठाकुर रो नीदम आउ
0: सुनी दउछु आपनकर मन पसंद रे गीत।

0: हेलो फोन इन मल्हार
1: शुभ संध्या बापा नमस्कार।
0: नमस्कार भाई शुभ संध्या आपण किए कहते क्योंठ कहते श्रोता बंधु मान जन दिखा केमी अच्छा से भूलबे
1: मुना पंडा कटिला।

0: हेलो फोन इन मल्लार
1: आपा नमस्कार मु भुवनेश्वर जयनगर बासंत कहती
0: आज्ञा भौणी नमस्कार आउ भौणी आमर कार्यक्रम सब शुणु छथि ना नाही
1: आज्ञा
0: आज मल्लार फोन इन रे कोन रहबो आपनकर अनुरोध रे गीत
1: साक्षी रहि जेबा मो शंकर चंद्र टाइटल गीत रे दियो
0: तेबी सुनी दूछु आपनकर ए मन पसंद रे गीतटी

पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने श्री राम अवतार की कथा सुनाते हुए ब्रह्म के निर्गुण तथा सगुण रूपों की व्याख्या की। जो निर्गुण अर्थात अरूप, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जिस प्रकार जल और ओले में कोई भेद नहीं, दोनों जल के ही रूप हैं, उसी प्रकार सगुण और निर्गुण भी तत्वता एक ही हैं। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को समझ पाने में असमर्थ होता है, इसी कारण वो प्रकाश पुंज पुराण पुरुष श्री रामचंद्र पर एक मानव की भांति मोह के आवरण में लिपटे होने का आरोप लगाता है।

0: I think Saurabh Das, Junior Athletic Champion 2023. Anything wrong with you? Don't worry. Try for the next time.
1: Tension nahi na. Maybe kichi better option thibo to pai. Chhade abhyas. Hale better option kon? Aau kichi option rahibon to pakhare.
2: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ओडिशा सरकार
3: सुभद्रा शक्ति बाजार रे एसएचजी मामानन को हाथ तयारी हस्ततंत्र

0: श्रोता बंधु एई केते दिन धरि जे गरम अनुभूत हेउछि ता सहिबा कष्टसाध्य तथापि सतर्क ओ सचेतन रही आमे माने जीवन बिताउछंती एई समय रे हठात आसी जाउछि काल बैसाखी पवन वर्षा संग को प्रबल वज्रपात बेले बेले परिस्थिति अनात हे जाउछि अल्प समय भितरे बड़ बड़ गच्छ भांगी जाउछि बिजुली खुंट उपड़ी पड़ुछि एई भली समय रे अधिक सतर्क हेबार आवश्यकता अछि काल बैसाखी रे अनेक खेती हेउथुबार मध्य आमे सुनुछे एई भली समय रे गच्छ पाखरे कि नदी पाखरे किंबा असुरक्षित घरे न रही सुरक्षित जागा को चली जिबा दरकार श्रोता बंधु प्राकृतिक विपर्जय रे अनेक गच्छ भांगी नष्ट होई जायथिबारु परिवेश रे संतुलन पई आमे समस्ते अधिक रु अधिक गच्छ लगाइबा निहाती आवश्यक एथि सहित आमे निज घर पाखरे बाड़ी अगणा रे बगीचा सृष्टि करिबा एहा द्वारा आमे तटका पनीपरिबा फूल फल पाइबा सह परिवेशर संतुलन रक्षा करिपरिबा तेबे श्रोता बंधु आज कार्यक्रम रे एई घर पाख बगीचा बा मो बगीचा को नै आजिर पल्लीमंच कार्यक्रम रे रहिछि एक सुंदर आलोचना आलोचनार विषय होउछि मो बगीचा आलोचना रे अंश ग्रहण करिछंती ओडिसा जीविका मिशन राज्य कार्यालय रे कार्यरत अमृता दास तांक सह भाग नै छंती सुभाष चंद्र नायक
1: मैडम आज पल्लीमंच कार्यक्रम को स्वागत करुछु नमस्कार
2: नमस्कार
1: प्रथम श्रोता बंधु मान को मो बगीचा विषय रे किछ धारणा दियंतु मो बगीचा प्रकृत रे कोन
2: तो मो बगीचा कथा जदि आमे आलोचना करुचे तो प्रथमे आमे गोटे सुस्थ शरीर रो परिमापक होउछे पुष्टिकर खाद्य जहाँ आमे समस्ते जानी चंती तो पुष्टि बगीचार अर्थ आमर पनीपरिया बगीचा जो पनीपरिया बगीचार आमे आमर शाग विभिन्न प्रकार पनीपरिया जमती कि आमर दैनन्दिन जीवन रे आमे रोसई घरे ताकु आमे रोसई करु जमती कि आमर बाइगण टमाटो झुडंग तो एमिति विभिन्न प्रकार पनीपरिया आमे सेई बगीचार लगे थांती तो जो पनीपरिया आम बजार किणुचंती ताकु जदि आमर पाखरे जो बगीचाटी अछि बा आमर घरर सामनारे हो बा आम घरर बाड़ीपटे हो जोठी आम पाखरे अल्प किछि जागा अछि सेही जागारे आमे उत्तम भावरे आमर पुष्टि बगीचाटी करिपरिबा आउ आमर हात पहांतारे आमे सतेज आउ ताजा पनीपरिया सबबेले पाइपरिबा
1: तबे एही जो पुष्टिकर बगीचा तार निर्माण बा प्रस्तुति विषय रे टिके कहिबे कि
2: ए बगीचाटी मुख्यतः आमर तीन प्रकार रो हेथे प्रथमे आमर गोटे आयतकार प्रकार अछि जोथिरे आमे सेथिरे आमर सातटी पट्टाळी आमे प्रस्तुत करंती तो से जो सातटी पट्टाळी आमे प्रस्तुत करंती ता पूर्वरु आमुकु जमिटिकु भल भाबरे कोदाळ रे हाणी कि ताकु समतल करबाकु

0: शहीद नगर ठू नहीं एस प्लानेट इन्फोसिटी नंदनकानन और सहर प्रमुख स्थान में बुलू पिठा ऑन व्हील यह केवल पिठार संभार नुहे आम परंपरा और नारी सशक्तिकरण परिचय आसंतु रजरे ओडिशार खांटी पारंपरिक पिठार मजा नियंतु एवं सुभद्रा शक्ति प्रयास को समर्थन करंतु।
1: माँ माँ देखंतु एथर राशन कार्ड रे केते चावल मिली।
2: अरे बहु एते चावल
1: कोठु आनिलु किए देला
3: किए आउ दबो मा आम सरकार दे छंती मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना आरंभ होईची परा एबे आमको मुंड पिछा 5 किलो नुह 10 किलो चावल संपूर्ण मागणा रे मिलुची।
2: अरे बा एटा तो भारी भलो कथा सरकार आम दुख बुझी छंती।
4: मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना 3 कोटी रु अधिक ओडिसावासी को मिलुची अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा ओडिसा सरकार आपणक सुख दुखर साथी।
5: प्रचार करुछु हिंदी चलचित्र गीत प्रथमे गायछन्ती अभिजीत एवं अलका एग्निक चलचित्र चलते चलते।

0: झगड़ने की क्या बात है यार?
1: पहले पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है,
0: पड़ा है।
1: फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो
0: टलका।
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम
0: मेरी भी तो सुनो।
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
0: जाए।
1: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर
0: मंडरा।
1: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
0: इंटीरियर
1: डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके दैट्स इट।

0: अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितोवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानियत को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
2: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
1: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र

0: प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 235,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा, उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलेन अख्तर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
3: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम BSF चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से ये भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
1: कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से

0: पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है. AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं. अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर.
1: ये आकाशवाणी है. विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया. मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया. इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे. विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई. इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए. पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है. ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है. इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है. एक रिपोर्ट.
2: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है. राष्ट्रपति ट्रंप की हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है. हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं. मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है. भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हों, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है. दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी.
1: इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है. उनका ये बयान भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है. दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई. अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया. पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है. पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं. सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया. सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा. फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा. ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा. 10वां आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है. टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा. मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. कल पूर्वोत्तर क्षेत्र, बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है. इस बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है. कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है. अगले 2 दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है. अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू. भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया. दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई. और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची. इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ. नमस्कार.
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार.

0: साक्षात्कार कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: एक ओर हजारों वर्षों की सभ्यताएं, दूसरी ओर नए भारत की आकांक्षाएं, एक ओर वेदों की वाणी तो दूसरी ओर डिजिटल युग की गति, एक ओर काशी के घाट, दूसरी ओर विश्व मंच पर भारत का बढ़ता सम्मान। पिछले 12 वर्षों में भारत ने सिर्फ विकास की नई इबारत ही नहीं लिखी है, भारत ने अपनी सांस्कृतिक चेतना, विरासत और पहचान को एक नए आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। काशी के धाम की बात करें या फिर केदारनाथ के पुनर्निर्माण की, विदेशों से आए मूर्तियों की बात करें या फिर ज्ञान भारतम मिशन की, साथ ही साथ वंदे मातरम के 150 वर्षों के राष्ट्रीय उत्सव की बात करें या फिर हम बात करें आज आधुनिक होते भारत के नए स्वरूप की, हर जगह चर्चा है एक ऐसे भारत की जिसकी ओर दुनिया उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में पिछले 12 वर्ष किस तरीके के रहे, इस पर चर्चा के लिए आज के खास मेहमान हैं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद, बहुत सारा आभार यह अवसर प्रदान करने के लिए।
1: शुरुआत यहीं से करते हैं, पिछले 12 वर्ष की हम बात करें तो संस्कृति के क्षेत्र में आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि दुनिया को लगता था कि विरासत और विकास दो अलग अलग विषय हैं, लेकिन भारत ने इसे एक साथ एकाकार कर दिखाया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में एक तरफ जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए सर्वस्पर्शी योजनाओं के माध्यम से, लोक कल्याणकारी सर्व कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश को परिवर्तित किया, वहीं दूसरी तरफ जहां भारत का आम व्यक्ति गुलामी की मानसिकता के बोझ से दब करके भारत पर स्वाभाविक गर्व करने की जो व्यवस्था थी, जो विचार था, उससे कहीं दूर भटक गया था, उससे कहीं अलग हो गया था। भारतीयों का भारत के प्रति गर्व का बोध वापस स्थापित करने में पिछले 12 साल में सफलता प्राप्त की है। इस 12 साल के दौर में जिस तरह से विरासत और विकास दोनों एक साथ चले, हम गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ करके अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में काम हुआ है और जो परिवर्तन और प्रभाव उसका दिखाई देता है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि 12 साल का कालखंड जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा।
1: जी बिल्कुल, कई सारे ऐसे विषय रहे जिसने संस्कृति मंत्रालय ने पिछले 12 वर्षों में बेहतरीन काम किया। अगर एक एक विषय की बात करें तो विदेशों से जो प्राचीन मूर्तियां आई उसका आप कितना प्रभाव मानते हैं? सिर्फ वो मूर्तियों का आना नहीं रहा, वो भारत की सांस्कृतिक चेतना का वैश्विक प्रसार भी दिखाता है और साथ ही साथ दिखाता है कि जब संस्कृति की कोई चीज वापस आती है तो विरासत भी हमारी समृद्ध होती है।
2: देखिए, 70 के दशक के प्रारंभ में यूनेस्को का ये वर्ल्ड कन्वेंशन हुआ जिसमें यह तय हुआ कि सांस्कृतिक धरोहरें यदि अनधिकृत रूप से उस देश से कहीं बाहर ले जाई जाती हैं तो इस कन्वेंशन के बाद की इन संपदाओं पर वो राष्ट्र अपना प्रोवेनेंस प्रूव करके उसको वापस लाने के लिए क्लेम कर सकता है, अनैतिक तरीके से, इलीगल तरीके से, चोरी से, तस्करी से, जो जिस किसी भी देश की संपदा गई हो। तब से लेकर के 2014 तक जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री के पद पर आसीन किया, विरासत का संरक्षण केवल शब्द नहीं था, उसके प्रति जो भाव था, मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूं कि वो 13 की संख्या बढ़कर के और 670 से ज्यादा हो गई है। और पिछले वर्षों में जिस तरह से हमने अनेक देशों के साथ इस पर अपने कल्चरल एग्रीमेंट्स किए, ऑब्वियसली अमेरिका जो सबसे बड़ा मार्केट इसका है, ऐसी सारी संपत्तियां संपदाएं चोरी होकर के अमेरिका जाती थी, उनके साथ जो हमने कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया, भारत की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग जब भारत में हुई थी 2024 के वर्ष में उस समय में, उसके चलते हुए एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ और हम 670 के आंकड़े को पार कर पाए। और आज जिस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम आगे चले हैं, इस साल के अंत तक जाते जाते हम 1000 के आंकड़े को पार करके हम 4 डिजिट की संख्या में पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं, विभिन्न वैश्विक मंचों पर जहां ये विषय रेलेवेंट है, भारत ने अपनी इस सफलता को दुनिया के दूसरे देशों के साथ में भी साझा करके ऐसे अनेक देश जिन्होंने गुलामी का दंश सहा है उनकी आवाज को बुलंद करने का भी काम किया है। हमारी कल्चरल प्रॉपर्टीज का रेस्टिट्यूशन, हमारा सांस्कृतिक सभ्यता

0: व्यक्तिगत हक है, ये आवाज वैश्विक मंच पर भारत ने एक नेतृत्वकर्ता बनकर के उठाई है। जब एक संपत्ति, एक संपदा, चाहे वो अन्नपूर्णा की मूर्ति हो, वो ट्रैक करके प्रधानमंत्री खुद इंटरेस्ट लेकर के वापस लाते हैं, और वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में जब पुनर्स्थापित होती है, वो एक सभ्यतागत मूल्य का पुनर्स्थापन होता है, एक इतिहास का वापस पुनर्स्थापन होता है, और एक राष्ट्रीय संकल्प का सिद्ध होना उसके कारण से दिखाई देता है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी इस विचार के प्रति, इस विषय के प्रति निष्ठा और संकल्प शक्ति, इन तीनों का प्रकटन इसके माध्यम से होता है।
1: अगर हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात को थोड़ा और आगे लेकर जाएं, हमने देखा कि काशी विश्वनाथ का पूरा कॉरिडोर बना, केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, उज्जैन में जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है महादेव का मंदिर, वहां पर महादेव लोक बनाया गया और बहुत टूरिज्म को बढ़ावा मिला। इसके दो पहलू हैं, एक तो जो सांस्कृतिक कॉरिडोर का निर्माण होना और उसके जरिए युवाओं को जोड़ना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। संस्कृति मंत्रालय आने वाले समय में भी इस तरह की किस योजनाओं पर काम कर रहा है?
0: देखिए, हमारी संस्कृति के मानबिंदु, हमारी सभ्यता के मानबिंदु, हमारी आस्था के केंद्र, जिनकी आपने चर्चा की, काशी बाबा का कॉरिडोर बनाने की बात हो, महाकाल लोक बनाने की बात हो, केदारनाथ के पुनर्निर्माण की बात हो, सोमनाथ जो भारत की अदम्य जिजीविषा का प्रतीक है, उसके मंदिर के परिसर के पुनर्निर्माण के साथ साथ में वहां इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का विषय हो, या सोमनाथ के आक्रमण, उसके ध्वस्त किए जाने के 1000 साल के पूरे होने को, या पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के को वर्ष पर्यंत उत्सव के रूप में मनाने और देश को उसके साथ जोड़ने का विषय हो, जगन्नाथपुरी के धाम से लेकर के देश के अन्य इस तरह के श्रद्धा के केंद्रों को प्रसाद योजना के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय द्वारा विकसित करने, वहां अवसंरचनाओं के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में टूरिस्ट एमिनिटीज को बढ़ाने का काम हो, निश्चित रूप से उसने वहां जाने वाले दर्शनार्थियों के अनुभव के स्तर को समृद्ध करने का काम किया है। लेकिन इसके चलते हुए मात्र पर्यटन को या धार्मिक पर्यटन को उछाल मिलाओ ऐसा नहीं है। पिछले वर्षों में जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई गई, उनको जिस तरह से सैचुरेशन के मंत्र के साथ में धरातल पर उतारा गया, उसके चलते हुए जो 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए, मध्यम वर्ग को जिस तरह से दोहरी राहत प्रदान की गई, एक टैक्स में कटौती करके, इनकम टैक्स के स्लैब्स को रिवाइज करके, जहां 2 लाख रुपए के ऊपर की आय पर इनकम टैक्स लगता था, आज 12.5 लाख तक इनकम टैक्स जीरो हुआ। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष करों में जीएसटी का लागू करके, देश में एक कर की व्यवस्था को लागू करके, जो कैस्केडिंग इफेक्ट से टैक्स लगता था, टैक्स ओवर टैक्स, उससे राहत प्रदान करके, और तीसरे देश की महंगाई को पिछले 12 वर्षों तक निरंतर काबू में रख करके जो है हिस्टोरिकली लो बनाए रखने में कामयाबी प्राप्त करके मध्यम वर्ग को जिस तरह से लेवरेज किया, उनकी जेब में जब डिस्पेंसिबल पैसा आया, तो सामान्य भारतीय की जिस तरह की सोच, मानसिकता और जिस तरह का विचार होता है, उसकी जेब में जब डिस्पेंसिबल इनकम होती है, तब वो पहली बार घर से बाहर निकलने का अवसर मिलता है, तो दशकों से, कई केसेस में पीढ़ियों से दबी हुई आकांक्षा कि कभी हमारे पास पैसा होगा तब मैं अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर के आस्था के किसी केंद्र में, जहां परिवार की आस्था हो या जिन जिन जगहों पर आस्था हो, वहां लेकर के जाऊंगा, दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करूंगा, दर्शन कराने का पुण्य प्राप्त करूंगा। ये सपना इन सब परिस्थितियों के कारण से साकार हुआ, और इसके साथ साथ में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, सड़कें बनी, वर्ल्ड क्लास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, मॉडर्न एज रेलवे भारत में आई, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ में उनके परिचालन की गति बढ़ी ताकि आवागमन में समय कम हो, नए हवाई अड्डे बने, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा कर सके, इस सपने को साकार सरकार ने किया, उसने भी निश्चित रूप से धार्मिक पर्यटन को बढ़ाया। पर्यटन की गतिविधि जो कहीं भी होती है, पर्यटन की अर्थव्यवस्था जो है वो ओवरऑल भारत की जीडीपी में 6% का कंट्रीब्यूशन करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन है, हमको इसको 2047 तक, जब भारत विकसित होगा तब तक 10% के ग्लोबल बेंचमार्क के बराबर लेकर के जाना है। लेकिन दूसरा, पर्यटन की अर्थव्यवस्था सबसे डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी होती है। जब आप और मैं पर्यटन के लिए कहीं जाएं, चाहे वो किसी भी पर्पज के लिए होगा, ट्रांसपोर्टर को उसको लेकर के रोजगार मिलता है, ट्रांसपोर्टर का कैस्केडिंग इफेक्ट से ड्राइवर को रोजगार मिलता है, गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को उसके चलते हुए रोजगार मिलता है, वो एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट होता है।

0: होटल में ठहरते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा रोजगार का प्रदाता है। निवेश विज रोजगार सृजित रोजगार अगर देखें तो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार सृजन करने वाला होता है। उनको रोजगार मिलता है, रेस्टोरेंट्स को रोजगार मिलता है, स्ट्रीट फूड वेंडर्स को रोजगार मिलता है, कोई सुवेनियर शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, क्राफ्ट शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है। इसके अतिरिक्त तो टूरिस्ट गाइड को रोजगार मिलता है, अनेक लोगों को पूरे समाज को उससे लाभ होता है। रास्ते चलते हुए कोई रुक करके शायद कोई खेत में से तोड़ करके फल लेकर के बैठी हुई एक महिला से अगर कोई जामुन खरीद करके खाए, कोई अमरूद खरीद करके खाए, कोई फल खरीद केला खरीद के खाए, उस फार्मर को रोजगार मिलता है। तो इज अ डिसेंट्रलाइज कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी और उसके साथ साथ में रोजगार के नए अवसर पैदा करना, ये दोनों ही पर्यटन के क्षेत्र की खूबसूरती है, खूबी है। और मैं ये मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हम 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था जो आज 4 ट्रिलियन पर है और पूरी दुनिया जिस बात पर विश्वास करता है कि 2047 तक 30 ट्रिलियन से ज्यादा की अर्थव्यवस्था होगी, उसमें जब भारत का ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर 10% का कंट्रीब्यूटर बनेगा, निश्चित रूप से जिस प्रमाण में भारत में डोमेस्टिक ट्रैवल बढ़ेगा उसी प्रमाण में भारत का इनबाउंड टूरिस्ट जो विदेश से आने वाले सैलानियों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि भारत की छवि बदल रही है, भारत की तरफ देखने की दृष्टि बदल रही है। तो भारत में एक तरफ भारत की 30 ट्रिलियन की संभावित अर्थव्यवस्था में 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर होगा, और वहीं भारत में जो 2,30,000 करोड़ रुपए का आय जो है विदेशी मुद्रा की जो ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर से होती है, ये भी लगभग इसमें जो है 10 गुना की अभिवृद्धि होगी। तो भारत में टूरिज्म सेक्टर भारत की इकोनॉमी का ड्राइवर भी बनेगा, बड़ा स्टेक होल्डर होगा, और क्योंकि जैसा मैंने कहा ये डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी होने के कारण से बहुत सारे रोजगार का अवसर पैदा करती है। जब हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिस लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम एग्रीकल्चर के बाद में सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेटर सेक्टर होंगे।
1: जी बिल्कुल, इसी में दो और पहलू हैं मंत्री जी। छोटे राज्यों की बात करें, बिहार में महाबोधि मंदिर कॉरिडोर की बात हुई, विष्णुप्रयाग मंदिर की बात हुई, साथ ही साथ बिहार में जहां सीता माता का जन्म हुआ था वहां भी शुरुआत चल रही है, रामायण सर्किट महाभारत सर्किट की भी चर्चा जोरों पर रही, इन सब का क्या रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं?
0: देखिए, इन योजनाओं पर हम राज्यों के साथ में निरंतर बातचीत करते हुए इस पर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कॉरिडोर्स या विषय हो सकते हैं जिसको स्तंभन करने के लिए जिस पर हम काम कर रहे हैं, हिस्टोरिकल ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, नेचर बेस्ड ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, ट्रैकिंग ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, बुद्धिस्ट बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, हम वाइल्ड लाइफ बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारी ट्रेल्स पर एक साथ में काम हो रहा है। और क्योंकि संभावनाओं का द्वार बहुत बड़ा है, इसलिए हम नए डेस्टिनेशंस डेवलप करने के लिए भी प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से उनके विजन के साथ में काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा उछाल दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में सस्टेनेबिलिटी के लिए, नए अनुभवों की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए हमको नए अनुभव सृजित करने पड़ेंगे। जहां एक तरफ हम अपनी सभ्यतागत धरोहर, चाहे वो राखीगढ़ी की आर्कियोलॉजिकल साइट होगी वहां से लेकर के और चित्तौड़ के किले की ऐतिहासिक साइट तक, उन सब को नए सिरे से ग्लोब जो है देश परियोजना के तहत डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 50 से ज्यादा विश्व स्तरीय आइकॉनिक डेस्टिनेशंस नए बनाने के ऊपर भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं।
1: अगर चर्चा को थोड़ी आगे बढ़ाएं, पांडुलिपियों के संरक्षण पर प्रधानमंत्री का बहुत जोर रहता है, ज्ञान भारतम मिशन चलाया जा रहा है पांडुलिपियों के संरक्षण और उसमें एआई तकनीक का इस्तेमाल करके उनका डिजिटलाइजेशन, कुछ उसके बारे में बताएं।
0: देखिये, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब विरासत के संरक्षण की बात की तब उनका मार्गदर्शन था कि हमको अपनी बौद्धिक संपदा की समृद्ध विरासत का संरक्षण भी करना चाहिए। भारत के हजारों साल के निरंतरता के सभ्यतागत इतिहास में भारत के ऋषियों ने, मनीषियों ने जो अनुभूत ज्ञान अर्जित किया, जो समृद्ध ज्ञान की धरोहर खड़ी की गई थी, वो कालांतर में अंग्रेजों की कुत्सित नीतियों के चलते हुए और उससे पहले पश्चिम से आए हुए आक्रांताओं के आक्रमण के समय में नष्ट कर दिए जाने के भय से उनको दबा छिपा करके रखने की पद्धति बन गई थी। दुर्भाग्य से आजादी के बाद में भी जिस तरह की मानसिकता के लोग सत्ता के सिंहासन पर बैठे थे, जो सिर्फ जन्म से भारतीय थे, बाकी

कि मन से, विचार से, आत्मा से, सोच से वो कहीं भारतीय नहीं थे। भारतीय परंपराओं के प्रति, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति, भारत के ज्ञान के प्रति उनके मन में श्रद्धा का भाव नहीं था। वो पाश्चात्य परंपरा से और पाश्चात्य सोच से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने भी उदासीनता रखी। ये हमारी हजारों साल की जो है बौद्धिक संपदा धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको चिन्हित किया जाना चाहिए, और उनका मार्गदर्शन का था कि इनको चिन्हित करके मात्र संरक्षण करने से काम नहीं चलेगा। किसी एक मैन्युस्क्रिप्ट को अगर हम शिष्य संहिता को अगर हम डिजिटाइज कर देंगे, उसका डिस्क स्कैन करके डिजिटल वर्जन को अपलोड कर देंगे, उसको हम सुरक्षित तो कर पाएंगे। उसको अगर क्षरण हो रहा है तो उसको कुछ सालों के लिए, आने वाले कुछ सदियों के लिए हम उसको एक बार फिर कंजर्व करके शायद रख तो पाएंगे, लेकिन आज के वर्तमान संदर्भ में वो उपयोगी हो ये नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हमारा अथाह ज्ञान का सागर है, ये वर्तमान में विश्व के उपयोग में आए, इसके लिए आवश्यक है। और उनका मार्गदर्शन था कि हम तकनीकी का उपयोग करके इसको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में लेकर के आए, ताकि आज की उपलब्ध तकनीकियों के आधार पर उनको देश और दुनिया की विभिन्न प्रचलित भाषाओं में परिवर्तित किया जा सके, ट्रांसलिटरेट किया जा सके। हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इस विषय से जुड़े हुए सारे विशेषज्ञों को बुलाया। 3 दिन तक, सुबह से लेकर रात तक, देर रात तक सभी लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स में, जिसमें पांडुलिपियों को रखने वाले भी थे, उनके कंजर्वेशन पर काम करने वाले भी लोग थे, एंडोलॉजिस्ट भी थे, टेक्नोलॉजी के लोग भी थे, जो भाषाएं डिसाइफर्ड नहीं है उनके डिसाइफरमेंट के लिए काम करने वाले विशेषज्ञ थे, ऐसे लोगों ने अलग अलग वर्टिकल्स में बैठ करके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने दिए थे, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, उसके सोल्यूशन और उसका रोडमैप बनाने पर विचार विमर्श किया। उन सबके प्रेजेंटेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 3 घंटे तक बैठ करके सुने, और फिर आगे उसका एक रोडमैप उनके मार्गदर्शन में बना। हमने अभी 2026 के मार्च के 20 तारीख को एक ऐप लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री से लॉन्च करवा करके एक सर्वे देश में प्रारंभ किया कि मैन्युस्क्रिप्ट जिसके पास में भी है वो उसका फोटो, उसका मेटाडेटा अपलोड करें। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 1,90,00,000 से ज्यादा ऐसे ग्रंथ जो है वो लोगों ने अपलोड किए, उनकी सूचना अपलोड की। हमने वेरिफिकेशन का प्रोसेस, क्योंकि कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो, डी डुप्लीकेशन भी आवश्यकता थी, कहीं हो सकता है कि गलत एंट्री आ जाए, इन सब का ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल एंट्री को वेरीफाई करके हमने अपनी रिपोजिटरी पर रखना शुरू किया है। वो संख्या भी 1,08,00,000 को क्रॉस कर चुकी है। ऐसे में मैं मानता हूं कि आने वाले समय में जब ये सारी बौद्धिक संपदा, ये सारी धरोहर संरक्षित भी होगी, और इस सारी धरोहर और संपदा को आज का विश्व जान सकेगा, आज विज्ञान पढ़ने वाले हम सब लोग, आप और मैं, जिस विषय को और जिन पुस्तकों को पढ़ करके जो हमको पढ़ाया गया, हम जिसको पढ़ करके सीखे, वो ये कहता है कि धरती सूर्य के चक्कर लगाती है, गैलीलियो ने सिद्ध किया था लगभग 400 वर्ष पूर्व। जब उसने ये कहा था तब उसको कितनी तरह की कठिनाइयों और यातनाओं को झेलना पड़ा था, सूली पे लटकाने तक का उपक्रम किया गया था। लेकिन हम मानते हैं कि उन्होंने ये विश्व में सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से प्रतिस्थापित किया। लेकिन भारत की बौद्धिक संपदा ये 400 साल पहले भारत की मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि 2000 साल पहले ऋषि आर्यभट्ट ने स्थापित कर दिया था कि सूर्य और धरती के बीच में कितनी दूरी है, इस सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, धरती सूर्य का चक्कर लगाने के लिए कितना समय लेती है, धरती अपने एक्सिस पर घूमने में कितना समय लेती है, धरती कितने डिग्री कोण में झुकी हुई है, धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, चंद्रमा का सर्कम्फ्रेंस कितना है, और वो धरती का चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, इसके अतिरिक्त अन्य ग्रहों और उन ग्रहों के उपग्रह क्या है, उस सबका रचना संसार उन्होंने पुस्तक में लिखा हुआ था। जब मैं आपसे पूछता हूं कि एक भारत की आने वाली पीढ़ी का बच्चा, चाहे जैन अल्फा होगी, बीटा होगी, जैन जी होगी, जब ये पढ़ेगा कि जो विज्ञान की किताबों में हमको पढ़ाया जाता है 400 साल पहले जिस खोज को यूरोप में होने की बात की जाती है, वो गर्व करते हैं, वो हमारे ऋषि, हमारे पूर्वज जो है 2,500 साल पहले भी जानते थे, जब वो ये अनुभव करेगा कि जब पूरा विश्व और विश्व के लगभग सब देशों जो आज अपने आप को विकसित होने का दंभ भरते हैं, अभिमान करते हैं, वो जब अपने आप को पशु से डिस्टिंक्ट करने के लिए, अलग दिखाने के लिए या अपनी लज्जा छुपाने के लिए प्रयासरत थे, जब वो पेड़ की छाल या जानवर की खाल लपेट रहे थे, तब हमारे यहाँ जो है वो भरत मुनि नाट्य शास्त्र लिख रहे थे, और उस नाट्य शास्त्र में वो मंच सज्जा कैसे हो, फेस एक्सप्रेशन कैसे हो, रस की अभिव्यक्ति कैसे हो, व्यक्ति की आंखों का और भावों की अभिव्यक्ति का सामंजस्य क्या है, हाथ की उंगलियों का लस्य क्या है,
बॉडी का जेस्चर

0: क्या होते हैं, किस तरह की ड्रेस होती है, क्या कलर कॉम्बिनेशन होता है, इन सब के ऊपर वो लिखित में शोध करके अपने ग्रंथ लिख रहे थे। हमारा भारत कितना समृद्ध था, ये जब हमारी नई पीढ़ी जानेगी तब वो भारत के प्रति गर्व की अनुभूति करेगी। और जिस देश और समाज के लोग अपने राष्ट्र पर, राष्ट्र की परंपराओं पर, राष्ट्र के इतिहास पर, देश की मान्यताओं पर गर्व करते हैं, वो देश निरंतर प्रगति करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो ज्ञान भारत मिशन है, ये निश्चित रूप से इस देश को परिवर्तित करने वाला होगा, इस देश के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा योगदान करने वाला होगा। और न केवल भारत के प्रति, अभी तो भारत के प्रति पूरे विश्व की देखने की दृष्टि बदलेगी, और इसमें छुपा हुआ अकूत ज्ञान और संपदा जो है वो विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी।
1: अब थोड़ी चर्चा वंदे मातरम की कर लेते हैं। 150 वर्ष पूरे हुए हैं, राष्ट्रीय उत्सव मनाया जा रहा है, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से कई तरह की पहल की गई। राष्ट्रीय चेतना का एक मंत्र था सिर्फ एक गीत न होकर वंदे मातरम। क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं और किस तरह की योजनाएं हैं इस दिशा में?
0: वंदे मातरम का गीत वो केवल एक गान नहीं, उस समय की परिस्थिति की कल्पना कीजिए जब अंग्रेजों का दमन चक्र चरम पर था। देश और देश के बारे में विचार करना, देश और देश के भक्ति की बात करना, परतंत्रता से मुक्ति की बात करना, उसके लिए अनेक अत्याचार होते थे, अनेक यातनाएं सहन करना पड़ती थी, और देश जो है मानसिक रूप से देशवासी और देश के उस समय के लोग टूट रहे थे। उस समय पे बंकिम बाबू ने जो ये अमर गीत लिखा, इस गीत ने एक भारत के उस कम मानसिकता की कमजोरी के उन्मूलन के लिए काम किया, और दूसरा भारत के विभिन्न हिस्सों में जो कालांतर में अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पर स्वतंत्रता के लिए अलग अलग मार्ग से संघर्ष हो रहा था, उस सबको एकता के सूत्र में निबद्ध करने का काम किया। और वंदे मातरम का यह अमर गीत जिसने हजारों लोगों को बलिदान होने के लिए प्रेरित किया, समर्पित करने के लिए प्रेरित किया, और उनके बलिदान से इस गीत के माध्यम से, क्योंकि उनके अंतिम शब्द वो मतंजनि हाजरा से लेकर के अनेक अनेक ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन के अंतिम शब्द फांसी के फंदे पर झूलने से पहले या सीने पर गोली खाने के पहले, या वीर सावरकर जैसे लोगों ने कोड़ों की मार खाते हुए कोल्हू में बैल में जुते हुए भी जो वंदे मातरम का उद्घोष किया, उसने लाखों लोगों को देश की आजादी की लड़ाई के साथ जुड़ने का मार्ग प्रशस्त किया था। इसलिए वंदे मातरम भारत की आत्मा का, भारत की सांस्कृतिक चेतना का गीत था। इस अमर गीत के जब 150 साल पूरे हुए, ये दुर्भाग्य था कि आजादी से पहले जिस तरह के विचार के लोग थे, और जैसा मैंने कहा कि उनके हृदय में कहीं भारत की चिति और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति इस तरह का प्रबल वेग नहीं था, उन लोगों ने वंदे मातरम के विभाजन को स्वीकार किया। जिस वंदे मातरम के विभाजन ने देश के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस वंदे मातरम के एहसास के साथ में, उस वंदे मातरम की भावना के साथ में, वंदे मातरम के गीत के साथ में अपने आप को खपा देने वाले लोगों की प्रेरणा प्राप्त करते हुए, इस महत्वपूर्ण समय में जब देश 140 करोड़ लोगों की ताकत के आधार पर विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ने के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, तब वंदे मातरम एक बार फिर प्रेरणा का पुंज बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए साल भर तक इस 150वीं शती पर स्मरणोत्सव आयोजित करने का हम सबको मार्गदर्शन दिया। हमने उस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ की, अलग अलग जगह पर इसके निमित्त कार्यक्रम हो, अलग अलग विधाओं के कार्यक्रम हो, उन सबको आयोजित करने पर कहा कि श्रृंखला प्रारंभ की। इसके अतिरिक्त इस पर एक हर एक व्यक्ति इसके साथ में जुड़े, जो वंदे मातरम का डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने बनाया, उस प्लेटफॉर्म पर भारत के लोग खुद एकत्रित होकर के अपने स्वर में वंदे मातरम को गा करके अपलोड करें, वंदे मातरम के साथ में उन लोगों को जोड़ने के लिए, प्रेरणा को प्राप्त कर सके, ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म सृजित किया, जिस पर करोड़ों लोगों ने आकर के वंदे मातरम का गायन करते हुए रजिस्टर किया। वंदे मातरम और वंदे मातरम से जुड़े हुए विषयों की देश भर में अनेक जगह पर प्रदर्शनी आयोजित की गई, वंदे मातरम के इतिहास से जुड़े हुए अनेक गोष्ठियां आयोजित की गई, विचार विमर्श आयोजित किए गए और किए जा रहे हैं। देश भर एक साथ में, एक जगह पर एक साथ में वंदे मातरम का गायन करें, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए, और उनके साथ साथ में वंदे मातरम पर अलग अलग तरह की, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अनुकूल फिल्म्स बन सके, वीडियो मटेरियल बन सके, अपने अपने तरह से लोग वीडियो मटेरियल बनाए, इसके लिए कॉम्पिटिशन आयोजित किए, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने

0: अब तक अपने कंटेंट अपलोड किए हैं। इस तरह से पूरे देश में वंदे मातरम को पूरे से पूरे देश को जोड़ने और एक राष्ट्रभक्ति का ज्वार हम पुनः इस महत्वपूर्ण समय में खड़ा कर सकें, जो उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है जितना आजादी की लड़ाई थी, इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम निरंतर काम कर रहे हैं।
1: दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है मंत्री साहब, और हम बात योग की करें, आयुर्वेद की करें या भारतीय भाषाओं की करें, दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचाना, जिसे आज आधुनिक दौर में सांस्कृतिक कूटनीति भी कहते हैं, संस्कृति मंत्रालय इस दिशा में किस तरह की पहल कर रहा है?
0: ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके इनिशिएटिव पर जिस तरह से योग पूरे विश्व तक पहुंचा, आज दुनिया के हर देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जो अभी आने वाले दिनों में 21 तारीख को आने वाला है
1: जी,
0: पूरा विश्व योगमय हो जाता है, ऐसा हम सब देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन विषय वहां तक नहीं है। मुझे क्योंकि दुनिया के अनेक देशों में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मिलता है, डे टू डे लाइफ में भी योग की एक्सेप्टेबिलिटी एज ए वेलनेस प्रैक्टिस, ए बैलेंसिंग प्रैक्टिस इन द लाइफ, वो अपनाने की में बहुत बड़ी गति मिली है। लाखों लाखों लोगों के जीवन का योग हिस्सा बना है और निश्चित रूप से उसके माध्यम से भारत के प्रति सम्मान बढ़ा है। भारत ने जिस तरह से आर्थिक दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रगति की, विभिन्न वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर भारत की प्रासंगिकता बढ़ी, इम्पोर्टेंस बढ़ी, भारत ने एक सदस्य देश से आगे बढ़ करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से विभिन्न विधाओं में एक लीडरशिप का रोल लेना प्रारंभ शुरू किया, भारत ने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, और इन सब के चलते हुए भारत की तरफ देखने की दृष्टि जिस तरह से विश्व की बदली, मैं मानता हूं कि उसके कारण से भारत की सांस्कृतिक परंपराओं, भारत के ज्ञान, भारत से निकले हुए विषयों की एक्सेप्टेबिलिटी भी पूरे विश्व भर में बढ़ी। हमने योग की बात की, हम भारत की संस्कृत की बात कर सकते हैं, आज दुनिया के 100 टॉप यूनिवर्सिटीज में से 75 में जो है संस्कृत का विभाग काम करता है, लगभग 40 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में वेद अध्ययन केंद्र खुले हैं या खुल रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत की जीवन पद्धति, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन लाइफ की बात की, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के थ्रेट से सारी दुनिया घबराई हुई है। भारत की कृषि परंपरा, भारत की परिवार व्यवस्था, भारत के गौवंश, इन सब की डिमांड पूरी दुनिया में नए सिरे से बढ़ रही है। भारत अब केवल दुनिया के लिए एक देश नहीं, भारत दुनिया के लिए एक इंस्पायरिंग नेशन के रूप में खड़ा हो रहा है, और भारत जिस दिशा, जिस गति से प्रगति कर रहा है, आज भारत विश्व के लिए एक भरोसेमंद मित्र और पार्टनर के रूप में खड़ा हो रहा है। हम भगवान बुद्ध के रेलिक्स को लेकर के दुनिया के विभिन्न देशों में गए, निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा कूटनीतिक प्रभाव पड़ा है, और इन सब विषयों को लेकर के भारत की छवि, जो कभी भ्रष्टाचार से ग्रसित देश, कभी कमजोर देश, आतंकवाद से पीड़ित देश, नक्सलवाद से ग्रसित देश के रूप, छवि के रूप में बनी हुई थी, आज एक सशक्त आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए देश की तरह छवि बनी है।
1: आपसे एक और सवाल समझना चाहेंगे कि जब हम बात अमृतकाल की करते हैं और 2047 में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की बात करते हैं, तो संस्कृति मंत्रालय किन भविष्य की योजनाओं पर काम कर रहा है?
0: देखिए, आजादी के 100 वर्ष पूरे करने तक देश विकसित देश बने, एक बहुत विजनरी और बहुत बड़ा संकल्प देश के प्रधानमंत्री ने लिया, जो देश 2014 से पहले अविश्वास के भाव में या आत्मविश्वास की कमजोरी से ग्रसित था, जहां व्यवस्था पर से विश्वास डगमगाया हुआ था, उस देश को 12 साल के इस कालखंड में, जो बहुत छोटा है किसी देश के परिवर्तन के दृष्टिकोण से, उससे बदल करके विश्वास से भरे हुए देश के रूप में परिवर्तित करके हम विकसित हो सके, इस दिशा में ले जाने का एक साहसिक काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत पर हम कदम दर कदम, दिन प्रतिदिन उस दिशा में आगे बढ़ रहे। इस मंत्र के साथ में हम भारत को विकसित करते हैं कि भारत विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होगा, तो निश्चित रूप से संस्कृति मंत्रालय की भूमिका बहुत बढ़ती है। जब कोई देश प्रगति करता है, विकसित होता है, तो निश्चित रूप से सम्मान अर्जित। मैंने एक दिन कहीं ऑन एयर इंटरव्यू में कहा था

0: और मैंने वो पत्रकार मित्र जो बातचीत कर रहे थे उनसे कहा, क्या आप कभी किसी ऐसे विक्षिप्त व्यक्ति के घर गए जो एक छोटे से झोंपड़ी में कहीं रह रहा हो, चारों तरफ दुर्गंध हो, महीनों से नहाया नहीं हो, कपड़ों में से दुर्गंध आ रही हो, बालों में शायद कीड़े रंग रहे हों, चारों तरफ बर्तन गंदे पड़े हों, मैले कुले चले कपड़े पड़े हों, सब कुछ अव्यवस्थित हो, क्या आप वहां जाकर के आपके मन में क्या भाव होगा जब आप जाएंगे? या तो करुणा का भाव होगा
1: जी,
0: या घृणा का भाव होगा, या दया का भाव होगा, या दान का भाव होगा। आपके मन में सेंस ऑफ ओनरशिप उसके लिए नहीं होगी। तो भारत की छवि जब ऐसी थी तब देश और दुनिया के लोगों के भारत के प्रति सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं थी। अब जब परिस्थितियां बदल गई, अब जब भारत विकसित होने वाला है, विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो भारत की तरफ देखने की दृष्टि और भारतीयों की भारत को ओन करने की दृष्टि बदली है, का विचार बदला है, भाव बदला है। और ये जब भाव बदलता है, जब देश अपनी सांस्कृतिक परंपराओं पर गर्व करना शुरू करता है, जब देश अपनी विरासत पर गर्व करना शुरू करता है, तब राष्ट्रीय भाव से उत्प्रोत होकर के जब काम करने लगता है तो राष्ट्र का संकल्प स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसलिए संकल्प को सिद्ध करने में भी संस्कृति मंत्रालय और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का पुनरुद्घाटन, भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। लेकिन उसके साथ साथ में भारत जब विकसित होगा तब भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत परंपराएं, भारत की एकता में विविधता और विविधता में एकता, ये दोनों विश्व को भारत की तरफ आकर्षित करने और भारत की तरफ सम्मान की दृष्टि से देखने का एक नया नजरिया जो है वो सशक्त रूप से पैदा करेगी।
1: कार्यक्रम के अंत में युवाओं को क्या संदेश देंगे कि वो अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ें, उन पर गर्व करें और उनका प्रचार प्रसार भी करें?
0: देखिए, भारत युवाओं का देश है और युवाओं की ताकत के आधार पर ही भारत विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और ये धरोहर देश की सांस्कृतिक परंपराओं के साथ में जुड़े हैं। उसके लिए मैं कहूंगा कि हम सब लोग जब कभी भी अवसर मिले, जहां कहीं भी अवसर मिले, जैसे जब भी अवसर मिले, हम देश की विरासत के साथ में, सांस्कृतिक संपदा के साथ में, धरोहर के साथ में, परंपराओं के साथ में जुड़े। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि वो सभी तीर्थयात्रा के लिए जाएं, वो भावना का विषय है, वो श्रद्धा का विषय है। वो भारत को देखें, भारत की विविधता को अनुभव करें, भारत की सांस्कृतिक वैधव्य को, जो विविधता है, वैविध्य को अनुभव करें, वो भारत की जो है नेचुरल लैंडस्केप की जो डाइवर्सिटी है उसको अनुभव करें, भारत के भोजन की जो समृद्ध परंपराएं हैं और उनका जो वैविध्य है उसको अनुभव करें, और उसके साथ साथ में भारत को जाने और पहचाने। जब वो ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से भारत के प्रति उनके मन में श्रद्धा और सम्मान दोनों बढ़ेगा और वो उनको भारत के लिए जुट जाने के लिए अभिप्रेरित करेगा। आइए हम सब मिलकर के भारत को जानना प्रारंभ करें, भारत को पहचानना प्रारंभ करें, भारत को जीना प्रारंभ करें और भारत को जान पहचान करके भारत के लिए जीना प्रारंभ करें।
1: कहते हैं नील गगन में सांध्य तारा का, पावस में प्रथम फुहारा का और माला में जो स्थान प्रथम मणि का रमणीय होता है वो ऐतिहासिक होता है। भारत के विकसित होने की इस यात्रा में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की जो पहल है वो इसी तरह की ऐतिहासिक पहल है। आकाशवाणी पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

0: ଶୁଣିଲେ ରବି କିରଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ବୀଣା ବାଦନ। ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ଭାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च

0: स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉ APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण साकार करने के लिए अनुसंधान और विकास के कई उपाय किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की प्रगति की भी समीक्षा की। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में यह जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। PV सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब उनका सेमीफाइनल में मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: कार्यक्रम शुणुंट आकाशवाणी कटक केन्द्र
2: राति 11:05 मुख्य संवाद सह महेन्द्र कुमार माझी। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार राज्य क्याबिनेट बैठक जारी। गत 2 वर्ष सरकार पदक्षेप जो विकास और सशक्तिकरण क्षेत्र में दृश्यमान पर आसी कहले मुख्यमंत्री। केजीठारु पीजी पर्यंत शिक्षा को देयमुक्त करने पर मुख्यमंत्री घोषणा। भुवनेश्वर विभिन्न प्रकल्पर शुभारंभ और शिलान्यास कले मुख्यमंत्री। कलाहांडी जिला सिरलीगुड़ा उद्घाटित है राज्यर प्रथम हाथी प्रशिक्षण केन्द्र। चलित नीट पुनः परीक्षा में परीक्षार्थी आउ अधिक 15 मिनट समय देवाई सरकार निष्पत्ति। जातीय परीक्षण संस्था NTA महानिर्देशकों सह पुनः परीक्षार स्वच्छता एवं सुचारू परिचालना नहीं कैबिनेट सचिव TV सोमनाथन समीक्षा बैठक। आईसीसी महिला T20 विश्वकप्रे आज इंग्लैंड और श्रीलंका मध्य मुकाबला। टॉस जीति श्रीलंका बोलिंग करने को निष्पत्ति। केन्द्र रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव आज रेलवे निजुक्ति बोर्ड द्वारा परिचालित निजुक्ति प्रक्रिया समीक्षा करिछन्ते। परीक्षा को स्वच्छता, त्रुटिशून्य और वैषयिक भित्तिक करने को कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा संपर्क में गुरुत्वारोप। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज नूआदिल्ली में गणमाध्यम और जोगाजोग विभाग अधिकारी विभिन्न प्रसंग नहीं बैठक में आलोचना। समस्त 36 जाक राज्य और केन्द्रशासित अंचल

0: आम परंपरा आम कला संस्कृति आकाशवाणी ही रखी साइति।
1: बन्या हेउ बा महाबात्या सबु परिस्थिति रे
2: गारु सहर जाए सबु स्थान रे
1: आबाल वृद्ध बोलिता समस्तंक पाई
2: जुआंग ओ सांतालंक ठारु बंडा एवं कोयांक जाए सबुरी भाषा रे
1: केवल आकाशवाणी।

कलह पचाते भूतानी कलह संघ रते प्रजा कलह सत्य सुजागर्ति कलह दूरति क्रम आम देशर महान पंडित अर्थशास्त्र प्रणेता आचार्य कौटिल्य बा चाणक्यों द्वारा रचित एक संस्कृत श्लोकर सारमर्म हो संसार सबुठ बलवान होल बा समय ए जगत कालर अधीन कालर प्रवाह समस्त क्षयशील प्राणी माने निद्रा गले काल से अविरत विद्यमान काल बा समय को अटकबार शक्ति कहार ना कि समय कहापाई केवे अटकी जाए ना से सदा चलमान।

0: प्रधानमंत्री सूर्यघर मागणा बिजुली योजना विद्युत बिल ह्रास करने सहित परेशकु सुरक्षित करें उभय केन्द्र और राज्य सरकार तरफ 138,000 टंका पर्यंत सब्सिडी पाइबे। आज ही पीएम सूर्यघर योजना पर आवेदन करंतु, निज छातरे सौर पैनल लगांतु।
1: आम राज्य रे एबे स्वतंत्र सघन संशोधन एसआईआर कार्यक्रम आरंभ हो जाइछि। एथिपई 30 मे 2026 रु 28 जून 2026 पर्यंत बूथ स्तरीय अधिकारी माने प्रत्येक घर को घर जाई प्रति निर्वाचकंकु दुईटी परिगणना फॉर्म देबे। फॉर्म गुडी को voters.eci.gov.in वेबसाइट रु मध्य डाउनलोड करि परिबे। फॉर्म दुईटी पूरण करबा परे एहाकु बीएलएमक निकटरे दाखल करंतु एवं तांकठारु प्राप्ति स्वीकार ग्रहण करंतु। अधिक सूचना पाई वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 को कॉल करंतु किंबा वोटर सर्विस पोर्टल किंबा ईसीआई नेट आप रे बुक ए कॉल विथ बीएलओ सुविधा रो उपयोग करंतु। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ओडिसांग द्वारा जनहित रे जारी।
2: श्रोता बंधु, ओडिसा रो पाला दासकाठिया घोडानाच छौ नृत्य संबलपुरी लोकगीत पंजाब रो भांगडा आसाम रो बिहू गुजरात रो गरबा महाराष्ट्र लाभणी एवं राजस्थान रो कालबेलिया भली लोककलागुडिक भारतर सांस्कृतिक जीवनशक्तिर प्रतीक। एगुडिक ग्रामीण जीवन लोकविश्वास और सामाजिक परम्परार जीवंत दलील।
3: अरे गले मृग मारी रे

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता।

तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोता बंधु, कला संस्कृति विकाश योजनारे आम देशरे विभिन्न समय रे विभिन्न सांस्कृतिक महोत्सव होउछि, प्रदर्शनी आयोजन करा जाउछि, जातीय संस्कृति महोत्सव, युवोत्सव एवं विभिन्न राज्यस्तरीय कार्यक्रम माध्यमरे देशर विभिन्न अंचलर कला एक मंचरे आसुछि। एहाद्वारा विविधतारे एकतार भारतीय आदर्श अधिक सुदृढ़ होउछि। आजर डिजिटाल युगरे एही योजना पारंपरिक कला को नूतन प्लाटफर्म दउछि। विभिन्न कलार डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, ऑनलाइन प्रदर्शनी एवं वर्चुअल कार्यक्रम माध्यम रे भारतीय संस्कृति विश्वर कोण अनुकोण रे पहुंचछि, फळरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर रे भारतर सांस्कृतिक प्रभाव आहुरी बढ़ुछि।

0: अमीना, बेटी अमीना, बुढ़ा बापा डबर इतने नाराज काहे की माँ? हाँ, खाइबू आ, हे हे ने हे रोटी का, कबाब का, मिठाई का, वो खाली आंसू आंसू तो गुस्सा ही गलो, खाइबू नहीं, ना ना, शे मो बेटी, से कौन जीबो? तुम्हें कितने चीज़ आनी चाहिए बेटी? तो आंसू नहीं, ये बेटी अमीना, तोरी पाई, खाली तोरी पाई मुझाई के लिए से सायतान मोतिल पाकू, शेरिटा गोठा है पाचे, शे मोजू तो तो छोड़े नहीं ची, मुझे तो तो चाहिए कुछ छोड़े नहीं, हलवा छोड़े नहीं, हलवा छोड़े नहीं।
1: नहीं तो से शैतान वकील।

0: सब मैटर्स रेडी कर रखी तमें जा खाली इनकम टैक्स ऑफिसर के संगे देखा कर सब निष्पत्ति सांगे 5000 टंका नहीं जाओ आ जो दरकार पड़े मत फोन कह
1: भाई ताले चल गले कड़े
0: अरु अरु अरु अरे कड़े गला सी धरणी एत बड़ भिड़ भितर कौट पाइबि देख देख अरे अरु अरु अरु अरु अरु
2: बाबू मो ए गोरु मार किछ खोज खबर मिलु नहीं
0: बिचार मा छोट पिलाटा मेला रुजी कुआड़े चली गला खेड़ी अझर से पड़ी आज से कौठी जा गछ मूल रखी रास्ता कड़े आश्रय नहीं थी एक किए कह बिशिया
2: बाबू थाना बाबू पर कहते अरुमा आम निश्चय मिले
0: बिशिया अरु मो वंशर शेष सतक से दिन कथा कौन मन पड़ुनि बिशिया से दिन थिला अमावास्यार घन अंधकार राति चारिआड़े बर्षा बादल घन कटा साई साई पवन अरुर जन्मदिन तो मार जो अवस्था
2: सब मोर मन अच्छे बाबू ये घर को कथा मुझे नजाने जे
0: बिशिया मोर कड़े पृथ्वी बंची कर और पिलाटा किए मिथी था पर दाउसा दिला
3: सर सर
0: के ओ धरणी किसी कोई हुआ
3: सर ये व्यवसाय विषय टिके
0: नहीं नहीं नहीं नहीं थोड़ी नहीं मत से व्यवसाय संक्रांत किसी कहना मोर ये मन अवस्था जहा
3: कि सर ए इनकम टैक्स रिटर्न टा तो यही मस 15 तारीख पूर्व दिजा सर से आउ जन लोक नाता पत्र कम
0: धरणी धरणी सतान पिता तुम्हें धरणी मो अवस्था देखी तो मन टे दया हो
3: किंतु सर ठीक समय रिटर्न दाखल न अवस्था
0: गुरुतर धोई साथ जाओ मोर सब संपत्ति रसा तल जाओ मोर दुई थर प्रसाद श्मशान हो जाओ घर मार्बल चटेल तुम देख धरणी बेस मन खोली हसबी येस लेट रूम बी बंट बट आई शैल डांस।

0: A wounded heart is hard to cure. Bhanga chatiya bhalo hi parana. Kete chantrana ichate re. Kete dukkha.
1: Sir.
0: Huh? Are? Omar? Tome asi chumai chal? Are? Kya chhi? Omar asi chhi? Bishya, Dharani, Arati, Aruna. Are? Are chai nahi kaiso? Mo junior chhi bara jui? Na. Ke shuni bani? Tome apikha karo Omar. Mu tome pai chai nahi.
1: Thau sir, thau. ना से सुनी लेनी पागल परी किचन आड़े चली गले तांकर ये भली अवस्था देबे
0: ए नियो अमर तुम पे मु निजे हाथ चा कर आंछ नियो
1: सर आपन निजे
0: अरे मु जोई पे मु निजे चाहनी बिन त आउ के आनिबो
2: ए बाबू मु चा चेटा धरी आसासु मु हाथ रु छोड़े आनी तुम को पारी होबनी बाबू
0: बिसिया होबनी तू मते शासन करिबु अरे चा मु पीबे आ मु जोई पीबे मु निजे चाने आसबिन त आउ के आनिबो कहलु तू आनि छतु ना ना ना ना ना मो झी पर राग करबो जोइरो सम्मान होबो अमर चा पियो
1: सर
0: कोन कहला सर मु तमो सर अरे तमे एमे पर्यंत पाठ पढिलो वीडियो हेलो कहा को कोन डका जाय जानलो नै ससुरों के केबे सर डाकंती हां डाकंती हेले से तो बिलात रे अमेरिका रे आमो ए ओडिसा माटी रे ससुरों को सर डाक चले ना हां अच्छा अच्छा चाटा पिनियो बुझिलो अमर मु तुम ससुर तमे मु जोई मते मते बाबा बोली डाको कहमी ओनली बाबा बाबा
1: बाबा
0: हाँ बाबा आह केले कौन है डाको केले स्वीट देर इज नो फ्रेंडशिप नो लव लाइक दैट ऑफ पेरेंट्स फॉर द चाइल्ड बाबा ठीक एमती डाको मु सुनी थी दस वर्ष तले बाबा बाबा डाके और मोर सारा घर टाक मुखरित कर
1: गला मन पक लाभ कौन से पी आप स्वास्थ्य सारा अवस्था जहा
0: अमर माय चाइल्ड ये दुनिया रे मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस ए देखुन तुम बापा और मुलु बाल्य बंधु खूब इंटीमेट तमें थिलो तुम बापा एकमात्र संतान आरु अरु थिला मोर एकमात्र कन्या तम दुहिं को नहीं आमे दुई बंधु भविष्य कल्पन विभोर ही उठलु
1: आपण कौन मोपाई कम कर सार बाप बहुत हर आपण सा न पाई मोर जे कौन है था हुए तो मुझे रास्ता कड़ रखु दुकान रे
0: थाउ थाउ थाउ अमर थाउ बिना स्वार्थ रे मुझे कर नी जहाँ कर से मत एकुटिया कर चली गला माटा मोर कौन
1: सर आपने तो अधर्य हूं सर
0: किंतु तुम कौन शुणी पार ना मोर तार से स्वर मूर्छना एबी घर चारिदी कर छंकार तोड़ी मो मार स्वर शुण सुनो अमर मो अरुमार गीत शुभुची सुनो ए सुनो मो अरुमार गीत शुभुची हाँ हाँ ना मो धर्ज हरिनी अमर मो धर्ज हरिनी स्थिर रहे मोटी फिर हर हाँ मो तो अपेक्षा करछी मो तो अपेक्षा करछी अमर मो तो अपेक्षा करछी मो तो अपेक्षा करछी
3: बेटी अमीना
4: बापू
3: अरे बेटी तो इंदी मोह सुकई चुकाई की कौन है जी बेटी
4: नाइ मो बापू मोर किछि नै हम कहै छी ना से कथा त हम केबे भी भाबी बनि बोली
3: अरे बेटी तोर छड़ा मोर आउ किए अछि को आउ कहा कथा भाबी भी तो मोर जान

0: बा ए छेड़ तो चमत्कार नाचुचे ए तो लोके खुशी है तापुर को पैसा भी कुछ दी पैसा रे लोभ देखे या को तो सहज रे फसी हबो चमत्कार आया थोर चेष्टा करी देखे ए जियो केड़ासिलु
1: मते डकछ
0: हां बुगता टी सुनिबु
1: को
0: भारी मूल्यवान कथा तू मो कथा राजी हेले पैसा रे पुती जीवु
1: अच्छा
0: जीवु मो साथरे
1: कोडी के
0: ए मो घर को असैति सब कहबी चल चल मो साथरे
1: हां चला

0: हेलो नित्यानंद बाबू, एठी कौन कर चली?
1: मुझे जदि कहे तुम्हारी इंतजार रे आछे?
0: इंतजार रे रबेश।
1: हटो तू रागी हो तो कहीं डालिंग, और तुम्हें जदि रागी हो डालिंग मु ताले कहार हेबी।
0: शट अप, आपण बारंबार आसी मते विरक्त करछने काई कहले?
1: बुझलो डालिंग, ए प्रश्नर आंसर टा

0: नीतू कौन हला धन एमती कांदुचु काई ओलो कौन है आग कहलु
1: बुझल बाबूल अरुण ना मत बाबा को सफा सफा मना कर बाबा को जी धर मत कुकुर लगे गोड़ेदेला
2: से टोकीरा हेड़े बाप बार बुली छतरी मो पु को पुणी कुकुर लगे धरीदेब ता तंटी भितर हाथ पुरे ता कलिजेटा को चोबे चोबे खाई जीवि
1: बापा ये कि अकल कहलु मत थर को थर शिशु बाल कहीं
2: फेरतु सी फेरतु सी कलिकतारु आज दिन कि मोर दिन गोटे छत्र मो पु पी अपमान पाइब
1: मत कांत मार्चल मो माइंड टा बड़ गुरुतर टा पांच दिखुनि टा देखी आसले ना मन टा हालुका ही जाता
2: सिनेमा जीव बापा हाँ। टा जा धन
1: मो बोटा थारी भल मु चलिली बो चलिली
3: चंपावती
2: चंपावती आसिले तेरे कौटे जाऊ
3: घर भितर को जाऊ कौन है मो घर को मुझे अरे छाड़ छाड़ बाट छाड़
2: ना मो पु को से टोकी सांगरे बाहा करी न आनिबा जाए तमे घर भितर पशि पारिबनी
3: गुणनिधि पुत्र मणि गले कुआडे
2: ता मन भल करे को सिनेमा जाईची
3: बुझिलो चंपावती खास एथि पई से टोकी कुलांगर को नात मारुची कौ झियो एबले गुणवंत को बाहाबो कहिलो
2: ना ना ना काहे की बाहाबो पोखरु रु दळ सफा करिबो तमे आ माछ खाइबो अन्य जणे एथि पई ता पछरे एत्ते टंका स्वाद करतुलो
3: से अमरता प्रमो चक्रांत को पंड करियो को बसछि तमे व्यस्त हो ना मु से प्लान करिछि एई तो बिसिया बुढा कोन एणि केनकी धपालछि
4: अरे कथा कोन की धरणी बाबू केते दिन हला तमोर को देखा नछला
3: हाँ टिके बाहर को जाइथिले आउ सब खबर कौन
4: हाँ सब भल आज्ञा ए अरुदे सागरे अमर अंकल बाहर हम जिन पत्र तो किणा कि चलती आउपरा दिन दिटा पर
3: शीघ्र
4: मल्ला तमे ना बेल पर बाबू ज्योतिष टके लग्न धरी मत कौन कथ कह बेल अच्छी जाऊँ बाबू मुझे
3: कंटा को केमिति कंटारे बाहर करने को हुए ताणी की बेस मालूम ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसरी
5: ये बुढ़ा इसको कोठी देखी अरे ये तो सही दिनेश बाबू का बुढ़ा चाकर बिसिया ओ बुढ़ा बाबू
4: कौन है
5: अरे बुढ़ा बाबू कहार बाहागर होची ना कारण शादी ब्याह आम गरीब गुरुवा को खाइबा को मिलिबो ता
4: सहर जाकर तो खाइबे तमे कहीं बात जीव
5: हाँ
4: जिनेश बाबू वकील को

ए अल्लाह ए खुदा बेटी अमीना तू को सरगरे चुरे मा वो तो बकु को दे जा बेटी वो तो

0: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो यह रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।
1: अभला गीतर प्रथम गीत गाई इतिश्री दास मीनाक्षी देवी रचना।

0: ଅଦ୍ୱୈତ ସେଠୀ ଏବଂ ସାଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷିତ ଦଣ୍ଡନାଚ ଗୀତ ଶୁଣୁଥିଲେ।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस

0: प्रकार से ओडीएफ से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर मां भारती की सेवा के लिए वापस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई।
1: श्रोता बंधु आपण माने कार्यक्रम सुनिछंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररु। कार्यक्रम आम केन्द्ररु प्रचारित हेउछि 308.6 मीटर तथा 972 किलोहर्ट्ज। आरंभ करिबा आपण मानकर प्रिय एवं मोर प्रिय कार्यक्रम मंजुळ मध्यान्न। अनेक गुड़ी एसएमएस आम पाखे पहुंची सारी जितेबाला अनेक गुड़ी एसएमएस मध्य गोटे घंटा समय भितर जी एसएमएस बाकी गुड़िक जिते रही जाने मन दुख कर आद मन दुख करतनी चारिटा बेले रहुछि चिरहरित कार्यक्रम से एसएमएस आपरे तेज डेरी नक आरंभ कर आज एसएमएस कार्यक्रम मंजुळ मध्यान्न। अनेक गुड़ी एसएमएस तो आसी किंतु प्रथम कहबी आमर नियमित श्रोता नारायण प्रधान लकी सोम एवं सोमनाथ साहू जिग्रन पट्टामुंडाई केन्द्रापड़ा दुईज लिखिंट एक दुजे के लिए कथचित्र गोटे गीत शुणापी किंतु नारायण प्रधान सार को कह जो गीत अनुरोध कर गीत ना सोमनाथ साहू एक दुजे के लिए जो गीत अनुरोध कर गीत अच्छी तेज आपण एक दुजे के लिए गोटे गीत गीत गई लता मंगेशकर एवं एसपी बालसुब्रमण्यम।

0: लका चिड़ू था ए आसी खाइबा कुते लेबो गे फदे
1: ए ए पसंद है ना नी ठीक अच्छे सुनो

एसएमएस करथिले प्रभाकर सीडीए सेक्टर 11 कटकरु निर्मला प्रत्युष उर्मिला धरित्री आपण माने समस्ते सुनिबाकु चाहुथिले धरित्री कथाचित्र रो गुटे गीत सपनर पथे पथे जो टिके आगरु मु गीतटी सुनै सरिछि तबे परवर्ती एसएमएस टी आसीछि कांतल आठगडरु लेखिछन्ती समीक्षा सदीक्षा संतोष निर्मला एवं मामाली आपण माने समस्ते रामायण कथाचित्र रो गुटे गीत सुनिबाकु चाहिछन्ती गीतटी को गाइछन्ती एस जानकी।

दुर्गा प्रसाद तलाई परेश्वर साही जोब्रा कॉलेज स्क्वायर कटकरु लिखिछंती आपण लिखिछंती शुभ मध्यान्ह मैम बहुत बहुत अभिनंदन आपणको जय जगन्नाथ आज्ञा आपण गोटे गीत शुणिबाकु चाहिछंती सावन आया बादल छाए साजेंट का कार कथाचित्र गोटे गीत से गीतटी से कथाचित्र कौन गोटे भी गीत आम पाखे ना से क्षमा चाहूँगी परवर्त समय जितेबाला अन्य कौन गीत रिक्वेस्ट करेंगे जदि आम पाखे थी आम निश्चित भाव में बजेब तेज साजन कथाचित्र गोटे गीत मुझे शुणा आशा कर भल लगे गीतटी गई अलका एक नायिका।